0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रो बीज फॉर्मूला आपकी चमक को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेस और दे कुदरती असली ग्लो। बी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हफ्ते इस्लामाबाद में गालियों थना जो इम्कान अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में चाहिए तो अमरीका ईरान सालसी कदर धुरन से गजी शुरूआती मुहिदे से कम कर रहा है जै तहत एक महीने तीन गालियों लाय फ्रेमवर्क तय किया वो जिन मकसद जंग जो खात्मो है ईरान से मामला तय न थिया तो बीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम तरफ वही सकूंता अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो जंगबंदी बाबत असाजी तजवीजन से ईरान जो जवाब अज मिलण जो इम्कान है प्रोजेक्ट फ्रीडम सुठो ऑपरेशन है करण जा बया तरीका भी प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस हों जैमें बी शूं भी शामिल हूं पैं कम कर रहा हूं कें डेडलाइन से को भी ध्यान ना है ईरानी पटी वजीर तर्जमान इस्माइल बाकाई चाहे तेहरान अमरीकी तजवीजन से गौर कर रो है नतीजे से पौतासी तो ऐलान कर छड़ी ईरानी फौज समूर सलाहित मुकम्मल तौर से तैयार है सूरतहाल भी नजर रखल अथ

ईरान हमला हुरमज लाइ कानूनी बिल तैयार करे वरतो। ओपन सेशन में मंजूरी वरती वेंदी। ईरानी पार्लियामेंट जो कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी चयो आहे त हमला हुरमज लाइ कानूनी बिल तैयार कयो वियो आहे। ईरानी पार्लियामेंट जूं सरगर्मियूं शुरू थींदे ई बिल मंजूर कयो वेंदो।

पेट्रोल अघनि में घाटी टोड़ वाद के आवाम रद्द कर छो। शहर जो चवण है तो पहरे ही महंगाई के मुंह डूं पाया। हुकूमत पेट्रोल महंगो कर जुल्म कया। हुकूमत पेट्रोल अघनि में कल वाद के फौरी तौर से वापस वटे रिलीफ फराहम किया वाले।

बलीर में बबारड़ा पानी के खर में बुरी पौत। हादसे में एक औरत हयाती विञाए पे थी। सुपर हाईवे भरसा धनीबख्श गोट में बबारड़ा पानी के खर में बुरी पौत थी। पोती बारन का लाश अस्पताल मुंतकिल सुणप नी सी। रोड हादसे में फोतल हसीना जाल मोहरम जो मड़ अस्पताल मुंतकिल।

ऐं नादरीन खानपुर वेझो पैसनि जी जज़ीलती हथां गोठाणो मुबैना तौर ते अगवा फैज़ुलाड़े वटां हथियारबंद ज़मीन ते ढोर चाढ़ींदड़ नौजवान अब्दुल शकूर ओटाणो खे अगवा करे विया। वारसनि चवणाए त हथियारबंद पंज मेहू ट्रैक्टर बि कया विया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोथकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
0: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
0: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
1: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
0: बस पो हाने खणो फोन ऐं पेंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03125252786।
1: जी हाँ, 2315525786।
0: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: अंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
6: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
4: जी हाँ, 2315-2575-786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
5: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: कोट गुलाम मोहम्मद वेझो ज़मीन मां चइनि ॿारनि जी माउ जो तशद्दुद थियल लाश हथ। शांतिनगर वासी सीता दी बिजल कोली जो लाश घर ॿारां बनीअ मां मिलियो। औरत जी माउ मूजिब धीअ खे क़तल कयो वियो आहे। जवाबदन खे गिरफ़्तार कयो वञे। पुलिस फ़ौज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इंतज़ारु आहे। बाक़ी जी जांच कई पई वञे। बलीर में बबाड़ा पानी के खर में बुढ़ी फौत। हादसे में एक औरत हयाती विञाए वेठी। सुपर हाईवे भरसा धनीबख्श गोठ में बबाड़ा पानी के खर में बुढ़ी फौत थिया। फौती बारन जा लाश अस्पताल मुंतकिल सुञाणप न थी सघी। रोड हादसे में फौत थियल हसीना ज़ाल मोहरम जो मड़ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड।

0: पंजू छितू पकियू हुजन त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितू लगरायो। सीमट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
0: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
0: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
0: जी हाँ 3615525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness. Chamak aisi diamond skin jaisi. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए बुड़ी 247-3-41-230।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
8: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
8: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125252786।
8: जी हा, 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
2: आन आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिले

0: प्री पिण कई वजे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-200।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: ट्रेंड का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GAFM 90.4।

ईरान अञा भी केतरा महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त कर सके तो अमरीकी गुजे ये ट्रंप इंतजामिया के आगाह कर छो आलमी नशियाती इदारे मूजिब सीआईए पे नई रिपोर्ट में जाना है तेरान वधीक चैन महीनों तीन अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त कर सके तो जै सबब ही ईरान अमरीका जो दबाव घड़े हद तक कबूल न कर रहा है। तेहरान के गाल में सुस्ती जो सबब यो ही है। ईरान आबदा हुरमत लाए कानूनी बिल तैयार कर वरतो ओपन सेशन में मंजूरी पे वरती वी ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन सरबराह इब्राहिम अजीजी है तो आबदा हुरमत लाए कानूनी बिल तैयार कर पो है। ईरानी पार्लियामेंट की सरगर्मी शुरू थन्दे ही बिल मंजूर कर वो पेट्रोल अगन में घाटे तोड़ वाद के अवाम रद्द कर छो शहर जो चवण है पहले ही महंगाई के मुंह दियूं पा हुकूमत पेट्रोल महंगो कर जुल्म किया हुकूमत पेट्रोल अगन में कल वाद के फौरी तौर से वापस वे रिलीफ फराहम करे पिंगरो की गोड खुदाबख्श सबाणी में नौजवान कुहाड़ी जा वार करे कतल वारसन जो लाश रखी धरणो जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो जवाबदार 21 साल के भुट्टो सोलंकी के कुहाड़ी जा वार करे कतल कयो वारसन मूजिब जवाबदार वरी सुभाणी नौजवान कतल किया खेस गिरफ्तार किया वे बनवाकिल वेझो पसंद पढ़ने लाइ घर निकल नारी के वासन जो नौजवान के घर से मुबैना हमलो मुबैना तौर से चार औरतू अगवा नौजवान सदी कुमार के वासन मूजिब हथियार बंद मुस्माद दातुल अलाजीवाई कायम साहेबा बहर के अगवा कर पुलिस कुछ न कर रही है। पुलिस चाहिए औरतू अगवा नायन थी अगवा वारा इतला कूड़ा आन कोर्ट गुलाम मोहम्मद वेझो जमीन में चैन बार माओ जो तशद थे लाशत शांति नगर वासन सीता धी बीजल कोली जो लाश घर भरसा बनी में मिलो औरत की माओ मूजिब धी के कतल किया वो है जवाबदार के गिरफ्तार किया वे पुलिस मूजिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इंतजार है बाकी जांच कई पी वे जैकम बाद बेटी बाजार में सक्करवासी शख्स जो लाशत पुलिस मूजिब लाश शिनाख खान मोहम्मद तौर किया तशद नजार निशान नजर नथा अचानक

सिंध में पानी की खोड़ खिलाफ़ आबादगरन जो एहतजाज जारी। फैजगंज टंडवादम में आबादगरन जो मुजाहरा। फैजगंज के बीह भाव अली नवाज भाव में पानी की खोड़ खिलाफ़ आबादगरन जो मुजाहरो। आबादगरन मूजिब पानी न मिलने सबब जमीनू सुकी पन। पानी फराहम किया वे टंडवादम के जाम बेराज मनकुनार नेदरा माइनर के आबादगरन जो पानी की खोड़ खिलाफ़ एहतजाज। आबादगरन चो तो पानी खोड़ सबब फसल सुकी तबाह थी वह पानी जो विकड़ो रोके फराहम किया वे।

0: रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
6: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125257-86।
9: जी हा 2315-2575-786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं शामिल प्रोग्राम होते जाएंगे किस तरह से आप हमें ज्वाइन करेंगे बिल्कुल जी वो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है जरा उसकी जानब भी आते हैं क्योंकि प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट्स होंगे और प्रोग्राम के अंदर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। तो आज जो मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है तो वो बिल्कुल ये होने वाला है आज जो है ना हमारे लिसनर्स जितने भी हमारे साथ मौजूद है जितनी भी समाज हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम सुन रहे हो शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो आज जरा आप मुझे ये बताइए हर लोगों के साथ ना स्किन अगर आपकी जो होती ना उसके साथ कोई ना कोई ऐसा मसला होता है जो कि आप चाहते कि भाई ये कैसे दूर किया जा सकता है या फिर आप लोगों को कई मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों को सहूलतें नहीं होती कि भाई आप किससे मशवरा कर सके या फिर अगर आप मशवरा करते भी हैं तो आप लोगों को ये नहीं समझ आती बात कि क्या वो अगला इंसान हमें सही जो है ना वो एडवाइस देगा या नहीं देगा। तो आज मैं आप लोगों से सवाल बिल्कुल ये पूछूंगी आज ऐसा करते हैं कि आप लोग जो ना मुझे अपनी स्किन की जो है ना वो प्रॉब्लम शेयर करेंगे आप लोगों की स्किन के साथ क्या प्रॉब्लम है वो आज आप मुझे बताएंगे और उसके साथ साथ मुनासिब सा जो है ना मैं आप लोगों को उसका हल बताऊंगी और उसके अलावा हमारे पास जो इतने सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनमें आप लोगों के लिए डी स्किन के प्रोडक्ट्स हैं और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं तो इनमें आप लोगों के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर अपनी ना खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। तो ये बातें आज के प्रोग्राम में हम करेंगे आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस होंगे आप लोगों के कॉमेंट्स होंगे और आप लोगों की कॉल्स भी होंगी। तो बिल्कुल जी अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स हैं तो क्या करेंगे अपना सेल फोन उठाएंगे जनाब मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे टाइप करेंगे LR की सिंगल स्पेस देंगे अपना नाम लिखेंगे पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप हमें इजीली सुन सकते हैं हमारा पेज जनाब जी लारकाना FM 88.8 का और जी FM 88.8 के पेज के ऊपर जब आप आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे कमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे ठीक हो गया जी। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ कॉल करना चाहते हैं प्रोग्राम में कॉलिंग के जरिए शामिल रहना चाहते हैं तो कॉलिंग आप लोगों का जो कॉलिंग वाला सेगमेंट है वो 2 बजे के बाद स्टार्ट किया जाएगा तो कॉलिंग नंबर क्या होगा वो भी 2 बजे के बाद ही बताया जाएगा। फिलहाल आप हमें मैसेज कीजिए और कॉमेंट करते रहिए साथ साथ बाकी जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं फेसबुक पर मौजूद रहना चाहते हैं कनेक्ट रहना चाहते हैं तो फेसबुक की पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए ठीक हो गया जी। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए इससे ये होता है कि भाई हम बहुत ज्यादा लोगों को बता पाते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप लोगों को कैसा फायदा मिलने वाला है। तो बिल्कुल अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को तो आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इसी के साथ साथ हम जरा आप लोगों को ये भी बताते चले कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं जनाब। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सबसे पहले व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है उसके बाद व्हाइट एज का जो है ना आप लोगों के पास विटामिन सी का फेस वॉश मौजूद है और उसके अलावा व्हाइट एज का ना आप लोगों के लिए ब्यूटी सो भी मौजूद है और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए व्हाइट एज की लवली अल्ट्रा विटामिन की क्रीम भी मौजूद है जो कि भाई आप लोगों की स्किन के लिए परफेक्ट वाला निखार साबित होने वाली है। उसके अलावा व्हाइट एज के हेयर रिमूवल लोशंस भी हैं जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आप लोगों को मिल रहे हैं। उसके अलावा व्हाइट एज का स्मूथ स्किन वाला जो है ना वो लोशन भी मौजूद है जो कि आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है काफी ज्यादा। लेकिन ये तो खैर सर्दियों वाला प्रोडक्ट है लेकिन अगर गर्मियों के प्रोडक्ट की बात की जाए तो इस लोशन को छोड़कर बाकी आप सारे प्रोडक्ट्स बसानी गर्मियों में भी लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आप लोगों को डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है। ये जनाब सीरम के साथ साथ तैयार होता है आप लोगों की स्किन को जो है ना वो डीपली मॉइस्चराइज करेगा आप लोगों की स्किन को डीपली खूबसूरत बनाएगा और डी स्किन के साथ साथ आप डी स्किन का फेस वॉश भी लगाते हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये जनाब विटामिन ई बीड से तैयार होता है माइक्रो बीड फार्मुलेशन के साथ साथ जो कि आप लोगों को 2 दिन के अंदर परफेक्ट वाले निखार देने वाले हैं। तो इतने शानदार क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए वहां से मालूमात लीजिए और परचेज कीजिए और इसी के साथ साथ हमारे करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल होने चाहिए और हम वहां से जाकर परचेज करना चाहते हैं तो उसकी 7995030315 7995 ये नंबर डायल कीजिए और अपने किसी भी करीबी जनरल स्टोर पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो आप इजीली अवेलेबल करा सकते हैं।
तो बिल्कुल जी अवेलेबल कराते जाइए, खूबसूरती को बढ़ाते जाइए और साथ साथ हमें बताते जाइए अपनी स्किन के प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना बड़े परेशान होते हैं कि हमारी स्किन के साथ ये मसला हो चुका है और हमारी स्किन जो है ना खराब हो चुकी है, हमारे चेहरे पर जो है ना एक्ने का बहुत ज्यादा मसला है या फिर हमारी स्किन काफी ज्यादा अजीब टाइप की है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि आप अपनी स्किन टोन को भी समझ नहीं पाते। तो आज आप जरा अपने स्किन के मसाइल मेरे साथ शेयर करेंगे और हो सकता है कि उन मसाइल में से थोड़ी बहुत से ऐसे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो कि आप लोगों के स्किन के लिए फायदेमंद साबित हो। ओके जी, तो बिल्कुल ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना है, अगर आप नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा। तो बिल्कुल जी शामिल प्रोग्राम होते जाइए और मुझे बताइए कि आप ये हमारे साथ मौजूद हैं और कहां से आप हमें सुन रहे हैं ये भी बताते जाइए। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ नूर से तनियो भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाड़काना से, आप हमारे शो की तारीफ करें बहुत शुक्रिया जी। नजीर खोस हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा हेंसी वफा मीर मुनव्वर अली भाई, वफा मीर मुनव्वर भाई आपको वेलकम करते हैं। आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी। हिदायतुल्लाह अहमद आनी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, वेलकम जी। इकबाल लाशारी हमारे साथ प्रोग्राम में कनेक्टेड हैं, वेलकम जी। और उसके अलावा हमारे साथ ही जनाब यहाँ पर वहा देरी सऊद देहरी नवाब शाह कहते हैं सलाम अदी शो तुम्हारा जो नाई साहेब प्लीज प्ले हो मेरा चना। ओके जी, मैं फुल कोशिश करूंगी आपको हो मेरा चना सुनवाएंगे। किशोर भाई आ चुके हैं, मैं तो ये बात है, वैसे वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है इन्होंने, तो हाँ अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता होगा आप लोगों का। चलिए जी, इसी के साथ साथ ना आप लोग हमारे साथ मौजूद रहते जाइए, ज्वाइन करते जाइए और मुझे बताइए आपकी स्किन के साथ कौन सा ऐसा मसला है जिसे आप चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, और साथ साथ प्रोग्राम में आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और कॉल भी करेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। 88 नेटवर्क आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

हम आ चुके हैं दोबारा आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हाँ जी, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है यहाँ पर सखर मोरू, मिरपुर खास मटियारी, सकर मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सही, यहाँ पर बातें होती हैं वाइट एश एनजी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना आप लोगों के खूबसूरती के लिए, आप लोगों की खूबसूरती को मेंटेन करते हैं और आप लोगों के चेहरे को हसीन से भी ज्यादा हसीन बना देते हैं। तो अगर आप भी अपनी स्किन को लेकर परेशानी, अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती जो है वो बढ़नी चाहिए और आप लोग हमेशा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखने वाले इंसान है, तो बोलिए ये बहुत अच्छी बात है, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा भाई कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आप लगाएं तो आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती जाए, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए हम लेकर हाजिर खिदमत हो चुके हैं। हाँ जी जनाब, वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स शामिल है, उसके अलावा जरा हम तफसीलन आप लोगों को बताएंगे। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जानब आते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आप दो रातें इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को परफेक्ट वाले निखार मिल जाते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है इसके अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल है। पाकिस्तान में कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है ना विटामिन ई बीड्स मौजूद है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की स्किन और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा ग्लोइंग बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल है एंड माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ साथ तैयारशुदा होने वाला ये प्रोडक्ट है। और इसके अलावा आप लोगों की ऑल स्किन टाइप के लिए सिर्फ दो दिनों में वाजे नतायज के लिए डी स्किन वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे जदीद अज्जा के लिए, जैसे कि इसके अंदर जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई है, ग्लूटाथायोन से भरपूर है ये क्रीम, रात भर काम करती है ताकि जल्द को चमकदार बनाए, डार्क स्पॉट्स हो या फिर आपके चेहरे पर जितने भी मसाइल हो वो सारे खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन के अंदर तक जाकर गहराई तक जाकर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके चमकदार बनाती है, जल्द की साख्त बेहतर करे और नरम हमवार खूबसूरती जल्द आपकी जो है ना वो बन जाती है, क्योंकि ये डर्माटोलॉजिस्ट की तजवीज से तैयारशुदा होने वाला प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो है ना इस तरह की कोई भी चीज ऐड नहीं की गई है जो कि आपकी स्किन को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने वाला प्रोडक्ट होगा। इसे आप हर स्किन टोन वाला इस्तेमाल लगा सकता है, इस्तेमाल करेंगे जी अगर आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव हो, दो रातों के इस्तेमाल से आपको मिलेगा परफेक्ट वाला हुस्न, तो दो रातें इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले ये बात भी याद रखें कि आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप कोई भी क्रीम लगाए ना तो उसी कंपनी का जो है ना वो फेस वॉश लाजमी साथ में लगाया करें। तो अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो उसके साथ आप डी स्किन का जो है ना वो फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए, रात के टाइम सोने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए, उसके बाद जो है ना आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए। दो रातों के इस्तेमाल के बाद आपको मिलता है खूबसूरत सा निखार, आपकी खूबसूरती जो है ना वो बढ़ती जाएगी और आप लोगों को जो है ना वो पता चलेगा कि आप वाकई कितना अच्छा प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर वाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जल्द को फ्रेश और गोरा बनाती है, हर किस्म के नुकसानदार असरा से पाक है और आपके चेहरे पर झुरियां हो, दाग धब्बे हो, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है एलोवेरा और एवोकाडो से तैयार शुदा है, तो ये भी बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा झुरियां आ चुकी हैं या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा रिंकल्स हैं, आपकी स्किन डल सी हो चुकी है, तो वाइट एश लगाएं और वाइट वाइट हो जाए। उसके साथ साथ वाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको जो है ना वाइट एश का ब्यूटी सो भी मिल रहा है और वाइट एश वालों का विटामिन सी का फेस वॉश भी मिल रहा है। अब च्वाइस आप लोगों की होने वाली है कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सोप लगाने वाले लोग हैं तो आप जाहिर सी बात है सोप लगाएंगे, अगर आप फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं तो जाहिर सी बात है आप फेस वॉश लगाएंगे, ठीक है। ये भी आप लोगों के पास ऑप्शंस मौजूद है। और इसी के साथ साथ हम जरा बात करेंगे वाइट एज की लवली क्रीम के बारे में। भाई ये तो मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट बन चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप जो है ना हर स्किन के साथ साथ जो है ना दिन में लगाने वाला प्रोडक्ट है और हर उम्र का इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी है, छोटे हैं बड़े हैं, तो हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वाइट एज लवली क्रीम जो है ये विटामिन से भरपूर है। इसके अंदर विटामिन B3 मौजूद है, विटामिन C मौजूद है और विटामिन E मौजूद है। उसके साथ साथ बहुत सारे
सारे विटामिंस का ये जो मिक्सचर है ये तैयार किया गया है, और व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों की खूबसूरती को इन्हेंस करती है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इसे आप दिन में लगाएंगे तो बिल्कुल लगाइएगा, दिन में लगाइएगा, रात में लगाइएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है सनस्क्रीन भी एड की गई है, जो कि अगर आप दिन में लगाएंगे तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप कॉलेज गर्ल हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपने व्हाइट एज की लवली क्रीम का इस्तेमाल तो लाजमी करना है। अगर आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब कोई इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल अपनी खूबसूरती को चमकता हुआ देखिए और व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाइए जो कि सनस्क्रीन के साथ तैयार शुदा है। और ये भी बात है कि इसके अंदर जो है ना 30 विटामिन्स के कैप्सूल ऐड किए गए हैं, तो हर तरह से जो आप लोगों की स्किन के लिए परफेक्ट वाला प्रोडक्ट साबित होने वाला है। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम ऐसा समझ लें कि आप लोगों की स्किन के लिए गेम चेंजर वाला काम करेगी। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप इस्तेमाल करें, वो लोग जो चाहते हैं कि भाई हमारी स्किन पर कोई लाइट सा फार्मूला होना चाहिए, लाइट वेटेड कोई आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप लोगों के लिए परफेक्ट है, जरूर लगाइएगा। और इसी के साथ साथ जो है ना दिन में लगाएंगे, सुबह के टाइम, रात के टाइम, जब भी आपका दिल करे। और साथ साथ जो है ना ये इतनी मस्त क्रीम है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इनफैक्ट मैं खुद ही भी इस्तेमाल कर रही हूं और मुझे बहुत ही अच्छे जो है ना वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छी वाली वाइब भी आ रही है, क्योंकि कहते ना जब स्किन तवाजी खुश हूं आए तो तवा पान ही खुश थी वेंदा आयो, तो स्किन की बिल्कुल खुश रखो, तवा पान भी खुश खुश रहो। उन सा गडो गड मुंह मां का बिल्कुल अजी जो सवाल पूछो आए, इनफैक्ट यो जो टॉपिक रखियो आए तो तवा आज मुखियो बुधायो पांजी स्किन जे बारे में, तवा जी स्किन जा केड़ा मसला आए जे तवा के परेशान कन पया, आई वो केड़ी गालियो आए जे तवा सोचो था अगर ये चीज मुझे स्किन ते न हो जिया तो शायद मां खुश हो जा पाजे जिंदगी में। ओके नहीं तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए और मुझे बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और कहां कहां से आप हमें सुन रहे हैं, बताइए ना, पता तो चले। और इसी के साथ साथ यहां पर आप हमें जो है ना वो शामिली प्रोग्राम हो रहे हैं, आप ज्वाइन करते जा रहे हैं तो शामिली प्रोग्राम आपको किया जाएगा, गाने भी हमारे पास मौजूद है तो हम गाने भी सुनेंगे। और इसी के साथ साथ आप क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं, तो फेसबुक वाले लोगों पोस्ट को लाइक और शेयर तो करो, दोस्तों को मेंशन करो, उस दोस्त को जो कि हमेशा अपनी खूबसूरती को लेकर जो है ना वो थोड़ा सा टेंस रहता है, मेरे चेहरे पर ये प्रॉब्लम है, अब इसे कैसे दूर किया जाए, तो उसे जरा मेंशन कीजिए हमारी पोस्ट पर, ताकि हम उसे बता पाए कि भाई आपकी खूबसूरती जो है ना अब सिर्फ बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब मार्केट में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, तो लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

जी क्या बात है, बड़ा अच्छा गाना एंजॉय कर रहे हो और इसके साथ साथ यहाँ पर अकेले अकेले गाना सुन रहे थे। ओके जी, आप लोगों के लिए लगाया है और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें की जाएगी और जरा आप लोगों के मैसेजेस की जाने बातें क्या की रही है देखिए तो जरा। ओके जी, सो अब्दुल रजाक भाई हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रजाक भाई आपको वेलकम करते हैं और साथ साथ दर्द दिल भी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम स्वीटी। अली अकबर बरोही भाई हमें सुन रहे हैं सकरण से, वेलकम जी, खुशामदीद। और नूर हसन तनु भाई आपने गाने की फरमाइश कर दी। ओके जी ओके। और उसके अलावा टॉपिक के ऊपर कहते हैं कि मेरी स्किन ऑल टाइप है, ऑल टाइप स्किन मतलब समझाइए जरा। और अब्दुल रजाक कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बेहतरीन आ है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जकी मानू लगान पयाओ, बिल्कुल ये चवन पया। वफा मीर मुनवर अली हमारे साथ मौजूद है, हेलो। अच्छा ये हमारे साथ ही हिदायतुल्लाह कहते हैं रिश्तेदार। अच्छा ये भी वाकई बड़ा मसला है हमारी जिंदगी के अंदर और कहते हैं। अच्छा फरमाइशें ठीक है जी, फरमाइशें थोड़ी वैसे कम किया करें, आपको पता है ना स्पॉन्सर्ड शो में आप लोगों की फरमाइशें थोड़ी सी इग्नोर की जाती है। किशोर भाई कहते हैं कि अदा सच्ची बुधा तू लगाई थो। यस मां सच्ची में लगाई दिया है, वाइट ऐसी लवली क्रीम अला सच्ची बुधाएं ॾाढी कमाल जी प्रोडक्ट है। अगर तव्हां थोड़ी ब्यूटी क्रीम तव्हां न लॻाईंदा न, तव्हां सोचो था त भई ब्यूटी क्रीम जेका आहे असां गर्मी में न लॻाईंदासीं, त तव्हां गर्मी जे मौसम में वाइट ऐसी लवली क्रीम लॻायो। वाइट ऐसी लवली क्रीम जेका आहे न, इहा न सिर्फ़ तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदी, छो त हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि मौजूद आहे, बल्कि तव्हांजी स्किन खे ग्लो भी बनाईंदी, खूबसूरत भी बनाईंदी। ऐं तव्हां पंहिंजी स्किन ते ॾिसंदा त वाकई केॾो फ़र्क़ु आहे। सो वाइट एसी लवली क्रीम त तव्हां लाज़मी लॻाइजो, उहे माण्हू जेके ब्यूटी क्रीम खां थोरो अवॉइड कंदा आहिनि। ओके जी, दर्द दिल कहती है कि टॉपिक चंदा कॉल पे बताऊंगी, चले हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, कॉल पर बताइएगा। और उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जी पैनल की जाने बातें हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर, यहाँ का शो माशाल्लाह है और इंशाल्लाह क्रीम खरीद करूंगा। सॉन्ग फायज अली का सुनाइएगा। ठीक है जी ठीक है, वैसे कौन सी क्रीम आप खरीदेंगे ये जरूर मुझे बताया करें ठीक है। और ये मोरो से हमारे साथ फिरदोस मौजूद, कहती है सलाम एस एम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी है? मैं बहुत अच्छी, लेकिन आपकी आवाज थकती नहीं क्या? शो खत्म होने के बाद भी अगले शो आने तक मेरे दिमाग में घूमती रहती है, अब तो एडिक्शन लग गई है। बाजी आप मुझे ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा और ये गाना स्पेशली आपको डेडिकेट है। अच्छा मेरी जान, मैं कोशिश करूंगी कि ये बिल्कुल गाना आपको सुनाएंगे और बहुत शुक्रिया आपका।

0: हाँ जी, तव्हां बि ॾिसंदा जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा वाइट हेयर जी लवली क्रीम।
1: इश्क मुश्क होता है ऐसा, आग और पानी जैसा, इश्क मुश्क होता है ऐसा।
0: तो बिल्कुल वाइट हेयर जी लवली क्रीम हुजे या वरी वाइट हेयर जो साबुण हुजे या वरी फेस वॉश हुजे, तव्हां इहे चीज़ूं जेके आहिनि इहे अहिड़ियूं चीज़ूं आहिनि जेके तव्हां लगाए सघो था बाबा दिलि खोले करे, छो त ही हर स्किन टाइप जे लाइ हूंदियूं आहिनि। ऐं साबुण त हर कोई इस्तेमालु कंदो आहे, फेस वॉश बि हर कोई इस्तेमालु कंदो आहे। अॼुकल्ह जेको आहे न, तव्हांखे हिकड़ी फेयरनेस क्रीम जी बि ज़रूरत हूंदी आहे, छो त गर्मियुनि जो मौसम अची वियो, त फेयरनेस क्रीम जे तौर ते तव्हां वाइट हेयर जी लवली क्रीम खे इस्तेमालु करे सघो था। तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदी ऐं तव्हांजी स्किन खे ग्लोइंग बि बणाईंदी। सही आहे, समझी विया न? ओके जी, चाचा खालिद भी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ चाचा, आप बताएं कैसे हो? जी बिल्कुल, आप हमारा शो सुन रहे हैं और कहते हैं अच्छा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? अच्छा ज़ेबुल निसा हमारे साथ मौजूद है। हाय आपी सिद्रा, हेलो ज़ेबुल निसा। और चाचा खालिद बिल्कुल आपको वेलकम करते हैं। वफा अब्दुल गफ्फार खास के लिए है फ्रॉम न्यू जतोई, आपका आवाज बहुत प्यारा है, मैं आपका शो डेली सुनता हूँ, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आपका वेलकम है। इरम हमारे साथ मौजूद है, इरम आपका भी बहुत शुक्रिया। आकाश ओड हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम मेप्रो खास, कहते हैं शुगर मील योर शो इज नाइस बाजी, मेरी स्किन ऑयली ऑयली रहती है, क्यों इसका हल तो बताएं जरा, और प्लीज प्ले आतिफ असलम सॉन्ग। ओके जी, ऑयली स्किन का तो बस एक ही हल है कि आप जो है ना अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं वाइट एज की डॉक्टर पिंपल वाला ट्यूब, डॉक्टर पिंपल के नाम से अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेज करेंगे ना, तो ये एक ऐसा ट्यूब है जिसके इस्तेमाल के बाद अगर आपकी स्किन ऑयली भी है ना, तो आपके चेहरे पर ऑयल कंट्रोल हो जाता है। और जिनकी स्किन ऑयली होती है ना, उनके साथ ये बड़ा मसला होता है कि उनके चेहरे पर एक्नीज काफी ज्यादा आते हैं। तो अगर आपकी स्किन भी वाकई ऑयली है, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे चेहरे पर ऑयल कंट्रोल हो, तो आप डॉक्टर पिंपल वाला ट्यूब इस्तेमाल करके अपने चेहरे के ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक फार्मूला है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भाई कुछ भी, सबसे पहले जो चीज खत्म करने वाली होती है स्किन से वो ऑयल होता है, तो ऑयल को खत्म करना चाहते हैं, गर्मियों में तो वैसे ये बहुत ज्यादा मसला बढ़ जाता है, तो ऑयल को खत्म करने के लिए आप डॉक्टर पिंपल वाला ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है, आयुर्वेदिक है, तो आप इजीली लगा सकते हैं। यानी कि ये नहीं कि इसके अंदर पता नहीं क्या ऐड किया गया होगा, पता नहीं किस तरह के प्रोडक्ट से ये तैयारशुदा होगा, तो आप इजीली लगा सकते हैं। इसके अंदर सारी चीजें ऐसी डाली गई हैं कि आपकी स्किन को फायदा ही पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ लुबना हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मेरे साथ मौजूद है अर्जी भुट्टो से हमारा शो सुन रही है, क्या बात है लुबी, आपको वेलकम करते हैं।
2: पहली चिंगारी भड़के जहां पर, दिल वाला ही बस ठहरे वहां पर।
0: हाय हाय,

ओके जी, फहद दे रही है, सऊद दे रही है, नवाब शाह से हमारा शो सुन रहे हैं, अदी बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा ये मौजूद हैं, क्या हाल है आपके जी? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर अली जरवारी, अरसलान अली अच्छा जावरी है, ठीक है, कामरान अली जावरी है, रिजवान अली जावरी है, नेमतुल्ला जावरी, समीर अहमद जावरी, तनवीर अहमद जावरी, जमील अहमद जावरी, गोट रोशन अली जावरी, अली आबाद से हमारे सांसद मौजूद है और आपको वेलकम करते हैं। ये मौजूद है जी, वालेकुम अस्सलाम, मुस्कान हमारी स्किन माशाल्लाह सही है, फर्स्ट क्लास है, सागर न्याज जानियो भाई हमारे साथ मौजूद है। चलें जी, आपकी स्किन हमेशा, मैं तो चाहती हूँ फर्स्ट क्लास ही रहनी चाहिए, क्योंकि स्किन अच्छी होती ना तो जिंदगी वाकई बड़ी अच्छी लग रही होती है, तो स्किन को फर्स्ट क्लास रखिए और इस्तेमाल करते जाइए व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन के प्रोडक्ट्स। ओके जी, खूबसूरतियाँ हासिल करते जाइए, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहते जाइए। टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, बस आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन बाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ Aloe Vera, Vitamins और Avocado की भरपूर खूबियां.
1: पर तय कयो वेंदो अमरीकी सदर ट्रंप अॼु ईरान तरफ़ां अमरीकी प्रेसिडेंट जे जवाब मिलण लाइ पुरउमीद. डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान सां मामला तय न थिया त ॿीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस थी वञी सघूं था. प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में ॿियूं शयूं बि शामिल हूंदियूं. पंहिंजो कम करे रहिया आहियूं, कंहिंजी डेडलाइन ते को बि ध्यान नाहे. ईरानी परडेही वज़ीर तर्जुमान इस्माइल बाखाई चयो आहे त तेहरान अमरीकी तजवीज़ुनि ते गौर करे रहियो आहे. नतीजे ते पहुतासीं त ऐलान करे छॾींदासीं. ईरानी फ़ौज समूरनि सरहदुनि सां मुकमल तौर ते तयार आहे. सूरतहाल ते बि नज़र आहे. ईरान अञा बि केतिरा ई महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो. अमरीकी गुझे इदारे CIA ट्रंप इंतज़ामिया खे आगाह करे छॾियो. आलमी नशरियाती इदारे मूजिब CIA पंहिंजी नई रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरान वधीक 4 महीननि ताईं अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो. जंहिं सबब ई ईरान अमरीका जो दबाउ घणी हद ताईं क़बूल न करे रहियो आहे. तेहरान जी ॻाल्हियुनि में सुस्ती जो सबब ई इहो ई आहे. सिंध में पाणी जी शदीद खोड़ दौरान पंजाब तकरारी लिंक केनाल खोले छॾिया. पंजाब तकरारी CG लिंक केनाल ज़रिए 5000 क्यूसिक ऐं TP लिंक केनाल ज़रिए 7,487 क्यूसिक पाणी खणण लॻो. इर्सा में सिंध जी नुमाइंदगी मामले ते ख़ामोशी अख़्तियार करे वरिती. ज़रनि मूजिबि तकरारी केनाल खणण लाइ पंजाब हुकूमत इर्सा खां इजाज़त बनाए वरिती. पंजाब पारां बिना इतलाउ जे तकरारी केनाल मां पाणी खणण बाद सिंध में पाणी बहरान संगीन थी वियो. आबादगार सख़्त परेशान. सिंध में पाणी जी खोड़ ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज. फैज़गंज टंडवादम में आबादगारनि जा मुज़ाहिरा. फैज़गंज जे फीमवा ऐं अली नवाज़ वाह में पाणी जी खोड़ ख़िलाफ़ आबादगारनि जो मुज़ाहिरो. आबादगारनि मूजिबि पाणी न मिलण सबबि ज़मीनूं सुकी वियूं आहिनि. पाणी फराहम कयो वञे. टंडवादम जे जाम बैराज मां निकिरंदड़ नेत्रा बांध जे आबादगारनि जो पाणी जे खोड़ ख़िलाफ़ एहतजाज. आबादगारनि जो त पाणी खोड़ सबबि फसल सुकी विया आहिनि. वीरपुर भटोर में बि आबादगारनि जो पाणी खोड़ ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो. पाणी फराहम करण जो मुतालबो. कराची जे सुपर हाईवे वारे इलाक़े में पंजाब बस अॾे ते फायरिंग. धीअ जे जनाज़े में शिरकत लाइ घुड़की वेंदड़ पीउ कतर सां भाउ ज़ख़्मी. पुलिस मूजिबि मंसूर धीउ जी फौतगी वारी इतलाह ते नंढे भाउ सां गॾु घुड़की वञी रहियो त वाकियो पेश आयो. शुरूआती जांच में वाकियो फुर मज़म्मत जो लॻी रहियो आहे. पेट्रोल लगन में घाटतोड़ वाद खे अवाम रद्द करे छॾियो. शहरनि जो चवण आहे त पहिरें ई महांगाई खे मुंहुं ॾियूं पिया. हुकूमत पेट्रोल वधीक महांगो करे ज़ुल्म कयो आहे. हुकूमत पेट्रोल लगन में कयल वाद खे फौरी तौर ते वापसि वठे रिलीफ फराहम कयो वञे. पिंगरो जे ॻोठ ख़ुदा बख़्शी सबाणीअ में नौजवान कुहाड़ियुनि जा वार करे क़तल. वारसनि जो लाश रखी धरणो जवाबदार. गिरफ़्तार करण जो मुतालबो. जवाबदारनि 21 सालनि जे भुट्टो सोलंकी खे कुहाड़ियुनि जा वार करे क़तल कयो. वासन मूजिबि जवाबदार मुनवर हिसबाणी नौजवान खे क़तल कयो. खेसि गिरफ़्तार कयो वञे. पनो अखिल वेझो पसंदि पाणे लाइ घरां निकितल नारी जे वासन जो नौजवान जे घर ते मोबाइल हमिलो. मोबाइल तौर ते 4 औरतूं अगवा. नौजवान सदीक मर जे वासन मूजिबि हथियार बंदि. मसमा दातुल अलाजिवाई कायमा ऐं साहिबा महर खे अगवा करे विया आहिनि. पुलिस कुझु बि नाहे करे रही. पुलिस चयो आहे त औरतूं अगवा नाहिनि थियूं. अगवा वारा इतलाउ कूड़ा आहिनि. कोट गुलाम मोहम्मद वेझो ज़मीन मां 4 वारनि जी माउ जो तशद थियल लाश हथ. शांतिनगर वासण सीता धीउ बिजल कोली जो लाश गड़बड़ सां बनी मां मिलियो. औरत जी माउ मूजिबि धीउ खे क़तल कयो वियो आहे. जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे. पुलिस मूजिबि पोस्टमार्टम जो इंतज़ार आहे. वाकिए जी जांच कई वञे. जेकमबाद जे पेटी बाज़ार मां सखरवासी शख़्स जो लाश हथ. पुलिस मूजिबि लाश सुञाणप खान मुमकिन तौर थी आहे. तशद जा निशान नज़र नथा अचनि.

0: आता है चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
5: जी हा 2315-2575-786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: ये जनाब सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। जनाब सो व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जी, तो बिल्कुल ये प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए हैं, आप लोग इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों की खूबसूरती बढ़ेगी और आप लोग कहेंगे भाई जान हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे। तो बिल्कुल जी, अभी खैर देर तो नहीं हुई है ना, अभी आप लगा सकते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। वहां से जाकर सबसे पहली बात जो ये है वो आप ये मालूम कीजिए कि वहां पर अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि अवेलेबल होंगे जभी तो जाकर आप परचेज करेंगे ना। तो अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं तो उसके लिए आप डायल कर रहे हैं 03157990595। ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए और वहां से जाकर आप इजीली परचेज करते जाइए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलना जरूरी है। ओके जी, तो जल्दी जल्दी से आप नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए 03157990595। ओके जी, सो आज आप मुझे बता रहे हैं आपकी स्किन पर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप जो है ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा सा परेशान हो जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी स्किन के साथ क्या ऐसा मसला है जो आपको परेशान कर रहा है। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम कॉलिंग वाला सेगमेंट ऑन कर देते हैं और कॉलिंग की जाने पाते हैं और कॉलिंग वाला सिस्टम जो है ना वो भाई मुझे कई मरतबा जो है ना वो ये मैं कह देती हूँ कि भाई अगर आप कल कॉल कर चुके हैं तो आज आप कोशिश कीजिएगा कि आज के प्रोग्राम में आप कॉल ट्राई ना करें, ठीक है। ऐसे ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं ना वो प्रोग्राम का हिस्सा बन पाते हैं। तो जिन लोगों ने कल कॉल की थी वो आज थोड़ा सा कोशिश करें कि वो आज जरा रहने दें। और इसके साथ साथ जो है ना हम यहाँ पर कॉल लेते हैं, फर्स्ट कॉल जो हमारे प्रोग्राम की होने वाली है और कॉलिंग नंबर आप लोगों को बताते चलें, कॉलिंग नंबर होने वाला है 03-3-2-1-3-2-2-8। ये कॉलिंग नंबर आप डायल करेंगे और हमारे प्रोग्राम में कॉल के जरिए शामिल प्रोग्राम हो जाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी स्किन का कौन सा ऐसा मसला है जो आपको परेशान कर रहा है। ओके जी, सो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉल देखते हैं और देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जमालदीन भा, खुश आयो, ठीक आयो? अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी मजे में। प्रोग्राम ॿुधो पिया जमालदीन भा?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा मूंखे ॿुधायो त प्रोग्राम जो नालो वग़ैरह अचे थो, यादि कयो आहे? ओके ओके, मूंखे ॿुधायो त प्रोडक्ट इस्तेमाल करण जे बारे में छा सोचो आहे, इस्तेमाल कंदा?
1: बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल कंदा, इंशाल्लाह सुभाणे करींदासीं।
0: चलो जबरदस्त, मूंखे ॿुधायो तव्हांजी स्किन जो कहिड़ो मसला जेको तव्हांखे परेशान कंदो आहे। चलो चलो चलो, इहो जेको आहे न तव्हां व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा त तव्हांजा वैसे ई लही वेंदा, निंड पूरी कंदा कयो।
1: चलो
0: जी जी ॿुधायो ॿुधायो ॿुधायो ॿुधायो।
1: वाह,

0: वाह वाह वाह वाह सफ़ा, ये जबरदस्त वाह जो प्रोडक्ट तुम सिलेक्ट कयो अज जे प्रोग्राम में गानो गाण लाए। जी जी जल्दी खणी वठो। चलो वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह तेजी स्पीड कुछ ज्यादा फास्ट हुई तो बिल्कुल जी तुम भी कॉल करे सको था। कॉलिंग नंबर है 0332-1322-8 कॉल ड्रॉप थी हुई। ओके जी सो कॉलिंग नंबर 0332-1322-8 तुम भी प्रोग्राम में कॉल करी शामली प्रोग्राम थी सको था। अदी जमालदीन भाजे का गाल कई तो मुझे अखिन जे हेठा हल्का काफी ज्यादा आए तने जो पेरियो मसलो थे तो तुम निंड पूरी करना कयो ठीक है। उनका पोई तुम व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल से जको ना तुम्हारी स्किन ते जके ये अखिन जे हेठा हल्का पई जी वे ये खत्म थी वेंदा। तुम्हारी स्किन जो जको रंग आ ना वो बिल्कुल सजो मैच मैच थी वेंदो। ई अगर तुम्हारी स्किन सही होंदी आ पर तुम्हारी स्किन ते अगर अखिन हेठा ये हल्का हों ना वाकई थोड़ो कम जो ना खराब लगन है। तो तुम मुझे बुधा पाया कड़ी प्रॉब्लम आ तुम्हारे फेस तुम्हारी स्किन से जो तुम्हें परेशान करी है। वड़ी गाल आ वड़ी गाल आ अज खबर पई। ओके सो ये कॉलर देखते कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम। केरस सगट मौजूद आ केरस सगट मौजूद आ दुआ लाड़काने का कॉल कई असान जी सोनी दुआ ठीक आयो मतलब यो कहावत आ पुरानी तो लाड़काने वारा मानू सोना हुंदा है। अच्छा मुखे यो बुधाया तो तमा प्रोग्राम बुधो पया अच्छा टॉपिक ते तमा जो छा चवण आहे ऑयली आइसक्रीम। चलो ऑयली स्किन वारन के जेको डिनो मशरो तो तां बुधी छडियो हुंदो। ओके बियो छा चवंदी तू हाँ बिल्कुल वैसे मां कोशिश या थी तो मां स्किन जो डॉक्टर थी वणा जेतरी मुके नॉलेज मिली वई आ। अच्छा मुके बुधाय बियो छा चवंदी तू आ।
1: अच्छा कुछ चवो
0: हां आवाज थोड़ो दुआ तमा जो कटजे तो हाँ थोड़ो नेटवर्क जो इशू आया तमा जो आवाज कटजे पयो। ओके सो दुआ ओके थैंक यू सो मच दुआ तां असन प्रोग्राम में शामिल थंदा इलाही सुठो लगंदा भले तू रोज कॉल कंदी करे तो ते मया नै। ओके सो हमारी प्यारी दुआ हमारे साथ मौजूद और हाँ लाड़काने वाला मानू सोना होता है पर सब सोना होता है लाड़काने वाला थोड़ा ज्यादा सोना होता है। चो तो बाबा लाड़काने वाला पेरिया का इस्तेमाल कन पाया व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड दी स्किन जा प्रोडक्ट समझो था ना हाँ तमाम भी इस्तेमाल कर तमाम भी सोना थी वनो। कॉलिंग नंबर आ 0332-1322-8 सो नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम। केरसा
1: आज
0: नाम दोबारा बताइएगा जरा।
1: आज
0: ओके जी आवाज जरा आपकी थोड़ी कट कट के आ रही है मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं आप।
1: बिल्कुल सुन रहा हूँ प्रोग्राम।
0: अच्छा टॉपिक के ऊपर आप क्या कहने वाले हैं।
1: हमारे ऑयली स्किन है।
0: ऑयली स्किन ना मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला है कि उनकी स्किन ऑयली है। चलिए आप प्रोग्राम सुनिए आपको मैं जरूर बताऊंगी की ऑयली स्किन वाले लोग क्या करें।
1: सलाम देना
0: चले जी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम मैं नहीं सुन पाई क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा मसला था लेकिन आपने हमें लाड़काना से कॉल करी बहुत शुक्रिया। और आपकी स्किन भी ऑयली है बताते हैं ऑयली स्किन वाले लोग क्या करें। लेकिन जरा कुछ कॉल्स ले लेते हैं। कॉलिंग नंबर 0332-1322-8 सो नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम। कैसे मौजूद आ नालो वराए बुधाए जो पंजो सोनी नालो पंजो वराए बुधाए जो
1: सबो
0: सबा। अच्छा किया आयो सबा ठीक आयो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सबा सुने प्रोग्राम बुधना आयो अजो भी बुधो पिया। अच्छा टॉपिक खबर है टॉपिक छा पुछो प्रोग्राम में अच्छा हूँ मतलब डेली बुधन आया था असो मुखे बुधायो प्रोग्राम जेको कया पे नालो तवा के असी तो चलो हाँ तवाड़ो कम कजो पाने करीबी जनरल स्टोर से वही वाइट एज जहाँ प्रोडक्ट जो मालूम कजो तो मिलन था या न था मिलन। अच्छा वाइट एज लवली क्रीम तो सबा तुम जरूर वो मुझे चवण से ओके बो सबा तुम चवंदा हलो सबा चवंदा बो प्रोग्राम में तवी पे मरतबा कॉल लगी आ हलाय छा चयो आवाज कटजी वियो जी जी चलो मां फायज़ अली जो गानो तव्हांखे ज़रूर ॿुधाईंदमि। बहुत शुक्रिया सभा तव्हां कॉल कई प्रोग्राम में पहिरियों मरतबा सभा जी कॉल लॻी प्रोग्राम में लॻे पई छोकिरी थोरी कंफ्यूज़ थी वई हुई कहिड़ा कॉलिंग नंबर 0332-1322-88 तव्हां बि कॉल करे सघो था। ओके सो ही वारी कॉल वठूं था ॾिसूं था त कंहिं रस सां गॾु मौजूदु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम कंहिं रस सां गॾु मौजूदु
1: आहे
0: अलीज़ा कॉल कई आहे अलीज़ा मीरपुर ख़ासि खां असांखे कॉल कंदी आहे। अच्छा अलीज़ा प्रोग्राम ॿुधो पिया अलहमदिल्ला मज़े में अॼु भला उर्दू न ॻाल्हाई इहो बि सही आहे मूंखे ॿुधायो त टॉपिक ते तव्हां छा चवंदा अलाए छो आवाज़ थोरो ईअं मतिलब सही नथो अचे कॉलर्स जो
1: मां चयो त मां कोई बि प्रोडक्ट लॻाईंदी आहियां क्रीम
0: पोइ छा थींदो
1: आहे मुंहिंजा दाणा निकिरी वेंदा
0: आहिनि। अच्छा त तव्हां दाणनि वारो प्रोडक्ट लॻायो जेके दाणनि खे कम कंदा हुजनि।
1: हा
0: क्रीम खां थोरो पोइ तव्हां अवॉइड कयो अगरि तव्हांजी स्किन सेंसिटिव आहे न त तव्हां उहे प्रोडक्ट लॻायो जेके तव्हांजी स्किन ते जेको आहे न त सूट नथा कंदो उन्हनि खे थोरो अवॉइड कयो ऐं तव्हां जेको आहे न वाइट एज जी जेका डॉक्टर पिंपल ट्यूब आहे न इहा तव्हां ज़रूरु ट्राए करे ॾिसजो। बिल्कुलु तव्हां इहा डॉक्टर पिंपल नाले सां वठंदा न त तव्हांखे मिली वेंदी इज़ीली मीरपुर खां लवली क्रीम ज़बरदस्त इहा बि तव्हांजी स्किन ते सूट कंदी। ओके ज़बरदस्त ॿियो छा चवंदी अलीज़ा
1: प्रोग्राम
0: ऐं निदा बि चए पई त मां बि ॻाल्हाईंदमि सो किथे ॻाल्हाईंदी न इहा कुझु ज्यादा शर्मीली आहे लॻे थो तव्हां भला बैकग्राउंड ॿुधो अदी निदा
1: हलो
0: छा हाल आहे निदा खैर खैर ॿुधायो तव्हां अलाए छा पिया चओ त मां कॉल थींदमि त मां
1: ॿुधाईंदमि
0: ऑयली स्किन आहे मतिलबु तव्हांजो बि इहो मसलो आहे। चलो सही आहे तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम हणजो ऐं जेको डॉक्टर पिंपल ट्यूब आहे न उहो ट्राए करे ॾिसजो। चलो ॿियो छा चवंदी निदा चलो कंफ्यूज थी वई रिलैक्स हो चलो ठीक आ थैंक यू सो मच निदा तव्हां ॻाल्हायो कॉल ते वैसे निदा ऐं अलीज़ा में इहो थोरो फ़र्क़ु आहे त अलीज़ा जेका थोरी कॉन्फिडेंट आहे ऐं निदा जेका न थोरी शर्मीली आहे सुठी ॻाल्हि आहे। उन खां अलावा तव्हां बि कॉल करे सघो था कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88 प्रोग्राम में तव्हां जूं कॉल्स बिल्कुलु वठंदासीं तव्हां सां कॉल ते ॻाल्हियूं कंदासीं कचहरियूं कंदासीं तव्हां खां पुछंदासीं तव्हांजी स्किन जा प्रॉब्लम। उन खां अलावा ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था उन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हां ॾे मोटींदासीं तव्हां करे न वञिजो इते वेठा हुजो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग आप सुन रहे हैं वाइट एश एनडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश प्रोडक्ट्स एनडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुनती रहिए और हमारा साथ दीजिए।
2: इट्स 2:30 PM This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Gloss Bleach Cream jo deep clean kare aur de 4 guna brightness chamak aise diamond skin jaisi Hemme Diamond Gloss Bleach Cream
4: Mehran ki sakafat se gunda hua awaaz ki zor se banda hua
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-200।
9: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
11: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
11: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
11: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 03125252786।
9: जी हाँ 3135525786।
11: GFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

जनाब सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएमएटी नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। ओके जनाब सो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स, तो हमें बताइए कि आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है उन तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाएगा और साथ ही साथ आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आप लोगों के लिए खूबसूरती की बातें होती हैं जनाब। अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते और आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर ये जो मसले हैं ना जिनकी वजह से आप परेशान हो चुके हैं तो वो खत्म हो जाए, तो बिल्कुल जी खत्म हो जाएंगे जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात आप लोगों को बताती चलूंगी, जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से जो है ना आप लोगों को ये बताती चलूंगी, जब आप कोई भी अच्छी वाली ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एश की ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है। उसके अलावा व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एश का ब्यूटी सो भी मिल रहा है और साथ में आप लोगों को अच्छा अगर ये चीज आप लोग समझते हैं ना कि अगर हम सोप इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों के लिए व्हाइट एश वालों का सोप मौजूद है और बाकी जो लोग चाहते हैं कि हम तो फेस वॉश लगाते हैं भाई जान, तो आपके लिए फेस वॉश भी मौजूद है क्योंकि व्हाइट एश का विटामिन सी का फेस वॉश भी अवेलेबल है जो कि आप लोगों की स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आप लोगों की स्किन पर जो है ना वो निखार लाता है, खूबसूरती लाता है, आप लोगों को खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। तो ऑल स्किन टाइप लोगों के लिए यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और परफेक्ट वाला प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ लेकिन जब भी आप लोगों को हर लिंक में ना बताऊं तो मुझे मजा नहीं आता और वो है जनाब व्हाइट एज की लवली क्रीम। और व्हाइट एज की लवली क्रीम उन लोगों को बताएं जिन लोगों ने हमें अभी अभी सुनाया स्टार्ट किया है, तो व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना जनाब ये रेडियंट अल्ट्रा विटामिन से तैयारशुदा है। इसके अंदर 30 विटामिन के कैप्सूल मौजूद है और साथ साथ इसके अंदर सनस्क्रीन भी मौजूद है यानी कि आप लोगों की स्किन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आपकी स्किन को खूबसूरत भी बनाएगी। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल करेंगे, विटामिन से भरपूर फार्मूला है जनाब, ये इतनी जबरदस्त क्वालिटी से तैयारशुदा है कि जब आप व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाने के बारे में सोचते ही ना तो आपने ये भी नहीं सोचना कि हमारी एज कितनी है, क्योंकि अक्सर हम बहुत से जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो एज के मामले में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी एज इतनी है तो क्या हम लगाएं या ना लगाएं। तो व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना, अगर आप कॉलेज गर्ल हैं, स्टूडेंट्स हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, किसी भी एज में है आप बिल्कुल लगा सकते हैं व्हाइट एज की लवली क्रीम। ये आप लोगों की स्किन को खूबसूरत बनाएगी, आपके चेहरे को प्रोटेक्ट रखेगी। अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, हर सूरत हाल में आप व्हाइट एज लवली क्रीम को इस्तेमाल करके जा सकते हैं और लगाइए, खूबसूरत हो जाइए। उसके साथ साथ अगर आप भाई जितने लोग हमें ये कह रहे हैं कि हमारी स्किन पर ऑयल बहुत ज्यादा आता है, तो जनाब ऑयली स्किन को कंट्रोल में लाने के लिए, ऑयल को कंट्रोल में लाने के लिए एक और चीज हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है डॉक्टर पिंपल। और डॉक्टर पिंपल ट्यूब जो है ये एक्नी का ट्यूब है और अगर जाहिर सी बात है ऑयली स्किन है तो उसके ऊपर एक्नी तो लाजमन होंगी। तो जनाब ये डॉक्टर पिंपल वाला ट्यूब आप इस्तेमाल कीजिए जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है। ये आपके चेहरे पर एक्नी मार्क्स हो या फिर आपके चेहरे पर किसी भी तरह के दाने आ चुके हैं या फिर आपके चेहरे पर ब्लैक पॉट्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, जितनी भी सारी ये चीजें हैं सब खत्म कर देता है क्योंकि इसका फार्मूला इतना मस्त है, ये डॉक्टर से तस्दीक शुदा है। तो आप बिल्कुल लगाइए, खूबसूरतियां ही हासिल कीजिए और अपनी स्किन को बोलिए यस अब आप चंकी कीजिए।

0: ओके जी ओके सो कॉल वठन आ सी तवां जो कॉल्स आहिन बिल्कुल कॉलिंग नंबर आ है 0332-1322-88 ओके जी सो ही वाली कॉल वठूं था दिसू था केयर कॉलर ऐसा सगेट मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केयर ऐसा सगेट मौजूद है इमाम भा ठीक आयो
1: अलहमदुल्ला खुश टीम खुश
0: जी जी सब ठीक प्रोग्राम बुध पे इमाम भा
1: प्रोग्राम नई प्रोडक्शन
0: हाँ बिल्कुल भली अव अल लगाई तो पान चंदा वाह वाह मजो अची वो जी सफा खुश आए चवन चाहिंदा जी जी बिल्कुल फायदा अली तव्हांखे ॿुधाईंदासीं मोहबतूं प्यारे भाउ जो प्रोग्राम ॿुधो पिया
1: जी जी
0: जी जी शामिल कयो वालेकुम अस्सलाम थैंक यू ओके जी सो बिल्कुल तव्हां बि इस्तेमाल करे सघो था वाइट एज जा प्रोडक्ट्स आहिनि जनाब ऐं दी स्किन जा प्रोडक्ट्स आहिनि ओके सो नेक्स्ट कॉल ॾिसूं था कहिड़े सां गॾु मौजूद आहे हैलो अस्सलाम वालेकुम
1: कहिड़े
0: सां गॾु मौजूद
1: आहे
0: ओके सही तव्हां सखर मां कॉल कई आहे छा हाल आहे तव्हांजो ठीकु आहियो
1: जी हा जी अलहमदिल्ला ठीक ठाक तव्हां ॿुधायो ख़ुशि रहिया पिया आहियो
0: जी अलहमदिल्ला प्रोग्राम ॿुधो पिया सईद अच्छा प्रोग्राम जेको ही हाणे मां कयां पई हिनजो नालो तव्हांखे अचे थो
1: अर्जी मूंखां पुछियो त सही मां इहो तव्हांजो नालो कीअं रखियो आहियां हिकु त हिन जे करे रखियो आहियां अर्जी सिद्रा ॿियो चरी हिन जे करे रखियो आहियां अर्जी सिद्रा तूं मंझंदि जो ईंदी आहे हिकु बजे खां प्रोग्राम
0: निंड वारो टाइम
1: असां ग़रीबनि जो बाबा असां ग़रीबनि
0: मूंखे न ईंदी आहे निंड त मां सोचींदी आहियां मां सभिनी जो फिट आहियां सईद ॻाल्हि ॿुधो हिकिड़ो मुंहिंजो इहो तव्हां कमु कंदा सखर में वञी पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां पुछा कराईंदा त वाइट एज जा प्रोडक्ट किथे किथे अवेलेबल आहिनि
1: ज़रूर बि मां पुछा कंदुमि ज़रूर बि तव्हांखे पोइ इंफॉर्म कंदुमि वठंदुमि बि ज़रूर बि अञा नालो ई असां कोन पको कयो आहे तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधो आहे
0: जी जी
1: हाणे थोरो नालो कालो पको कयूं त पोइ वठी चऊं
0: चलो हा नालो तव्हां पको कयो आराम सां ई जॾहिं प्रोग्राम हलंदो वेंदो त तव्हांखे नाला सभिनी जा पका थी वेंदा
1: हा ॿियो अर्जी मां ईअं चवंदो आहियां तव्हांखे लाइफ माशाला छो कराइजे न काथे मुर्दो अर्जी पियो हुजे नाराज़ न थीजो पर उहो
0: बस बस अहिड़ी तारीफ़ न कयो अलाह माण्हू सड़ी वेंदा ॿियो ॿियो कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदा
1: जेके बि ॿुधनि
0: थैंक्यू सो मच सही तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई ईअं ई मोहबतनि सां प्रोग्राम ॿुधंदा कयो ओके जी सो बिल्कुल तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर सां वञी मालूमात वठो किथे किथे अवेलेबल आहिनि ऐं किथे किथे कोन था मिलनि इन सां ईअं थींदो त तव्हां जेको आहे न थोरो सम्झी वेंदा त किथे असांखे वञिणो आहे किथे न आहे वञिणो ऐं हिकिड़ो जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायां पई हुन नंबर ते तव्हां राबितो करे वठो जीअं तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल थी वञनि ओके सो कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88 सो छा था चओ ॿी कॉल वठां

0: ओके जनाब, सो यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉल पे करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है. ये कॉल तो प्यालो करी भाई. चलें ये वाली कॉल है. ओके सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम जी.
0: केना से सगड़ा दो
1: अजी आ कुर्बान अली खास के लिए को बुलाया
0: गो झंडो मरी मां. झंडो मरी का. ओके झंडो मरी का तवा जी कॉल लगिया. प्रोग्राम दो प्या.
1: प्रोग्राम कुछ जी ने गाजी बुटोरी को शादी रखी भाई. शादी में आनो आंदा जी. हां प्रोग्राम आ कुतु डेली शामिल थीना
0: है. हाय हाय केंदी शादी हुई.
1: शादी मुजी पंजी.
0: वाह वाह शादी मुबारक तव.
1: खैर मुबारक हो. खैर मुबारक हो. अजी असान जे लाइफ पर सेरो बुदाजो. बहुत पुराना सियाओ पर सेरो
0: कुछ. हां हां ठीक है. सेरो लाइंदा सी पर सुबाने वाली प्रोग्राम में तो खत्म जण वारो प्रोग्राम आ.
1: हां तो तां जो क्रीम माशाल्लाह सुठो है. दोस्त इस्तेमाल कनि बे. कुछ दोस्तन के याद करना दो.
0: जी जी करी बैठो.
1: असले प्यारो दोस्त है रुस्तम खास के लिए. शमन खास के लिए. अमीरो भीने विक्यो खास के लिए. शबीर खास के लिए. आई खालिद लाशारी. जी जी तरह का गुलाम रही बलोच का जिके दोस्त बुधन में सफर में सलाम मोहब्बत हूं.
0: ओके थैंक यू. थैंक यू प्रोग्राम में कॉल गई. दोस्तन जलाए भावट केडी मोहब्बत हुई दसो ता. ओके सो ही वाली कॉल उठूं दावस प्रोग्राम जी लास्ट कॉल होंगे. ठीक है सुन के रस सगर मौजूद है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम. बाजी केड़ा दो आदम पुछायो.
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. अधो से सगर मौजूद है.
2: मोहम्मद अजीम राजीडी फैन
0: है. ओके अजीम भा छाला खुश आयो.
2: दुआए बाजी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ता खुश आयो.
0: अल्हम्दुलिल्लाह अजीम है. प्रोग्राम दो पे अजीम भा.
2: जी जी बाजी प्रोग्राम दो ता.
0: नालो जी तो प्रोग्राम जो
2: प्रोग्राम दादी जको बुधना है ता जे जको भी खणी ला प्रोग्राम.
0: अच्छा मुखे बुधाय ता पाजे करीबी जनरल स्टोर ता मालूमा जरा वठी जो ता वाइटेज दा प्रोडक्ट्स उते मिलन न था.
2: बाजी ओ सुबारे ता कंफर्म करे बुधाई नो मा.
0: जबरदस्त बियर. नेक्स्ट टाइम तवा जी कॉल आगे ते ता मुखे जरूर बुधाय जो.
2: जी जी बाजी कॉल भी वडी दुखी लगनी आ बाजी.
0: हां या गाल बिल्कुल आ ता ट्राई करजो. तवा जी कॉल लाजमी लगंदी.
2: मेओ
0: छा चवंदा प्यारा भा.
2: बस बाजी सजी टीम जे सलाम तागे स्पेशल सलाम बाजी.
0: ओके थैंक यू सो मच अजीम भा. तवा कॉल कई इलाही सुठो लगो. माशाल्लाह तवा सा गाल आए. नहीं उन खा अलावा जेको आसो बस ही लास्ट कॉल हुई असनी प्रोग्राम जी. हाँ या हकीकत आदे जो नालो याद ना है पर झंडो मरी याद आ सके. झंडो मरी का कॉल कंदो आवे चाड़ो काफी टाइम का. माशाल्लाह शादी थी वैसे सदी जी. ओके सो गानो लगायो आई प्रोग्राम में जिको आसा वट थोड़ो वनी टाइम बचो है. असो पैनल ते कुछ मैसेजेस ना रसूलाबाद का आवे दोसिन संबानी भाई हमारे साथ मौजूद. दिवाली को मसलाम अदी. उफ गर्मी डाढी आहे. बिल्कुल गर्मी डाढी आहे भा. आई छाता चो यो कमकार भी कयो था. बिल्कुल जी कमकार भी लाजमी आहे. असा भी कमकार कयो था. ता भी कयो.
3: दिल में हसती हो तो क्या रात में रोती होगी.
0: आय हाय. अच्छा ये दरावान से डॉक्टर राम फकीर हमारे साथ है और जे एम जोगी फकीर. हाय सिद्रा आप कैसी हैं. मैं ठीक हूँ बताएं आप कैसे हैं. ये हमारे साथ है जेबुल निसा. जेबुल निसा मोरो से हमें सुन रही हैं. बहुत शुक्रिया स्वीटी. और गोठ नबीदाद बमरो नारो खाम. गरम सर्द हवाओं में. गरम वरी सर्द हवाओं में सानो प्रोग्राम बुधन पया. इमाम डिनो बमरो भा तांजू मोबदू आए. और ये हमारे साथ है सागर न्यास जानियो भाई. आपका बहुत शुक्रिया. चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद है. बहुत शुक्रिया चाचा खालिद.
3: याद तो आती होगी. दिल दुखाती होगी मेरी तस्वीर.
0: ओके ये हमारे साथ मौजूद हैं जी.
3: लाती होगी
0: सदाकत हुसैन मियानी. सहा बचल शाह मियानी सखर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं. और सिटी शहदादपुर से मीर अलाह दिनो खान टालपुरी. आपका शो वेरी नाइस से बहुत शुक्रिया जी. जमीला हमें सुन रही हैं. थैंक यू वेरी मच. मायरा हमारे साथ मौजूद है. बहुत शुक्रिया मायरा.
3: एक दीवाने को खून से मैंने लिखा.
0: अच्छा वो कॉल. हाँ वाकई खुद ही कट हो गई. अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है. अच्छा प्रेमचंद भाई हमारे साथ मौजूद है. बहुत शुक्रिया. मीर मुमताज अली जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम. मोहब्बतों तो आंजू प्रोग्राम में तो पया. और सागर अली रजा हमारे साथ मौजूद है. बहुत शुक्रिया. सनाला बिरोई हमारे साथ है. थैंक यू जी. थैंक यू. अच्छा हिदायतुल्लाह अहमदानी आपका भी बहुत शुक्रिया. मैं जल्दी से आप लोगों के कुछ ना नाम ले लेती हूँ. और ये फराज अली ब्रोई हमारे साथ मौजूद है. बहुत शुक्रिया.
3: याद तो आती होगी.
0: अच्छा गुलाम हैदर फुलपोटो हमारे साथ मौजूद है. खैरापुर मीरज से वेलकम.
3: याद तो आती होगी.
0: अच्छा किशोर भा मोबाइल मथी कदम तो वरी लिसनर्स जो जो आवाज ही कोने दो माइक में सो लिसनर्स के मोबाइल मथी करनी पवंदी और सिबगतुल्ला रांझा हमारे साथ मौजूद है भाई आपको वेलकम करते हैं और ये हैं जी वफा मीर मुनव्वर अली अनवर भाई भी आ चुके हैं थैंक यू सो मच मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है वेलकम महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है आपको शो पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया जी और अमानुल्लाह शेख हमारे साथ मौजूद है वेलकम किशोर भाई भाभी को बोले कि जरा खुद ही परचेज कर ले जार खाली हो जाएगा तो फिर यूज कर लीजिएगा दर्द दिल आप बहुत प्यारी हैं अच्छा फजीला सिंधी भी हमारे साथ मौजूद हैं फजीला सिंधी आपको दिल से वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और आपने कायनात को और सभी सुनने वाली लड़कियों को सलाम दिए हैं सो वालेकुम अस्सलाम

ओके जबार भाई सर आपका भी बहुत शुक्रिया. ओके सो अपना ढेर सारा ख्याल रखियोगर यहीं पर आप लोगों से हमें इजाजत लेते वरी सलाह तमाम से मुलाकात मुझे सुभाने वाले प्रोग्राम में थेण वाली आ सो पांजो ओ हेलो सरो ख्याल रखना किते का गलती थी जे तमाम माजरत कया भाई जिना फीडबैक रेजी चुका है जिना गाना रेजी चुका है सभी का माजरत कयूं था. सो मुकलानी ना है बाबू सिलसिला में सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: विचो भर में जंग बावजूद पाकिस्तान पारां मुआशी हदफ़ हासिल करण जो एतराफ़. हलंदड़ साल पाकिस्तान तरक़ी शरह ट्रेड आई 6% ताईं रहण जो इम्कान ज़ाहिर. IMF जी एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान जे मुआशी प्रोग्राम लाइ ट्रेन तयारी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी. IMF पारां जारी पधराई मूजिब पाकिस्तान में बेरोज़गारी जी शरह 6.9% ऐं महांगाई जी शरह 7.2% रही सघे थी. टैक्स नेट खे वधाइण वारनि कोशिशुनि में बि तेज़ी आणणी ज़रूरी आहे. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ हलंदड़ महीने चीन जो दौरो कंदो. सदर शी जिनपिंग ऐं वज़ीर आज़म ली चांग सां मुलाक़ातूं कंदो. ज़रियुनि मूजिबि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ 23 खां 25 मई ताईं 3 ॾींहनि जे दौरे ते चीन वेंदो. पाक चीन लाॻापनि खे 75 साल मुकमल थियण जे तक़रीबनि में बि शिरकत कंदो. वज़ीर आज़म जे दौरे दौरान पाकिस्तान ऐं चीन विच में मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ते बि सहियूं कयूं वेंदियूं. CPEC ऐं वापारी लाॻापनि खे वधीक थी ॾियण ते बि ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं. अमरीका ईरान में थींदड़ हफ़्ते इस्लामाबाद में ॿीहर ॻाल्हियूं शुरू थियण जो इम्कान. मामला तय न थियण ते सदर ट्रंप जी वरी ईरान खे ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू करण जी धमकी. अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जनरल रिपोर्ट में चयो आहे त अमरीका ईरान सालसी कंट्रियुनि सां गॾिजी शुरूआती मुआहिदे ते कम करे रहिया आहिनि, जंहिं तहत 1 महीने ताईं ॻाल्हियुनि लाइ फ्रेमवर्क तय कयो वेंदो. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बि अॼु ईरान तरफ़ां अमरीकी तजवीज़ुनि ते जवाब मिलण लाइ पुरउमीद. डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां मामला तय न थिया त ॿीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ़ वञी सघूं था. प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में ॿियूं शयूं बि शामिल हूंदियूं.

पंहिंजो कम करे रहिया आहियूं, कंहिं जी रेड लाइन ते को बि ध्यान न आहे। ईरानी पटेई वज़ीर तर्जमान इस्माइल बाकाई चयो आहे त तेहरान अमरीकी तजवीज़नि ते गौर करे रहियो आहे। नतीजे ते पहुतासीं त ऐलान करे छॾींदासीं। ईरानी फ़ौज समूरनि सलाहियतुनि सां मुकमल तौर ते तयार आहे, सूरतहाल ते बि नज़र अथसि।

0: अकबर जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं। कराची में डॉक्टर्स जी एनआईसीएच खां जनाह अस्पताल ते रैली। पाक फ़ौज खे भेटा पेश। टनो मोहम्मद खान में पुलिस जे जवाननि पारां जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते रैली कढी वई। बनवाकल में पाक फ़ौज जी हिमायत में रैली। खैरपुर में मेडिकल कॉलेज खां सिविल अस्पताल ते रैली कढी वई। लाड़काणो में तालीम खाते पारां जंग में कामयाबी जी खुशी में रैली कढी वई। पीर जो गोठ में मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जे उस्तादनि शागिर्दनि पारां रैलियूं कढी वयूं। भारत खे बरतनाक शिकस्त ॾियण ते पाक फ़ौज खे भेटा पेश कई वई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारी

0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200
1: कैश ए किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जू पक्यू छितू लगरा लाए खुश खबरी छा अमा चाहियो था अमा जे घरन जू छितू पक्यू हुजन त कैश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगरान लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 3:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream Kudrati Jizan sa tayar kayal Jekade Kudrati Nikhar Saaf Naram Ay Roshan Chehro Heme Diamond Glow Bleach Cream
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
4: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीत के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
5: 538 शहरों में बैंक अलबीत के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
6: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीत से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: तो भाई साहब क्या समझे?
7: बैंक अलबीत, रिश्ता भरोसे का।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
10: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
11: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
5: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने।
1: ओ भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
6: करो छोड़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: IMF जो विच ओवर में जंग बावजूद पाकिस्तान पारां मुआशी हदफ हासिल करण जो एतराफ़. हलंदड़ साल पाकिस्तान जी तरक़ीअ जी शरह ट्रेड आई 6% ताईं रहण जो इम्कान ज़ाहिर. IMF जे एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान जे मुआशी प्रोग्राम लाइ ट्रेन जाइज़े जी मंज़ूरी ॾेई छॾी. IMF पारां जारी पधराई मूजिबि पाकिस्तान में बेरोज़गारी जी शरह 6.9% ऐं महांगाई जी शरह 7.2% रही सघे थी. टैक्स नेट खे वधाइण वारी कोशिशुनि में बि तेज़ी आणण जी ज़रूरी आहे. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हलंदड़ महीने चीन जो दौरो कंदो. सदर शी चिन पिंग ऐं वज़ीर आज़म ली चांग सां मुलाक़ातूं कंदो. ज़रियन मूजिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 खां 25 मई ताईं 3 ॾींहनि जे दौरे ते चीन वेंदो. पाक चीन लाॻापनि खे 75 साल मुकमल थियण ते थींदड़ तक़रीबन में शिरकत बि कंदो. वज़ीर आज़म जे दौरे दौरान पाकिस्तान चीन विच में मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ते बि सहियूं कयूं वेंदियूं. सी पेक ऐं वापारी लाॻापनि खे वधीक हथी ॾियण ते बि ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं. अमरीका ऐं ईरान में ईंदड़ हफ़्ते इस्लामाबाद में ॿीहर ॻाल्हियूं शुरू थियण जो इम्कान. मामला तय न थियण ते सदर ट्रम्प जे वरी ईरान खे ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू करण जी धमकी. अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जनरल रिपोर्ट में चयो आहे त अमरीका ईरान सालसी कम कंदड़नि सां गॾिजी शुरूआती मुआदे ते कम करे रहिया आहिनि, जंहिं तहत 1 महीने ताईं ॻाल्हियुनि लाइ फ्रेमवर्क तय कयो वेंदो. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प बि अॼु ईरान तरफ़ां अमरीकी तजवीज़नि ते जवाब मिलण लाइ पुरउमीद. डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां मामला तय न थिया त ॿीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ़ वञी सघूं था. प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में बि ॿियूं शयूं बि शामिल हूंदियूं. पंहिंजो कम करियूं पिया कंहिं जी रेड लाइन ते को बि ध्यानु नाहे. ईरानी पटे वज़ीर जे वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे तेहरान अमरीकी तजवीज़नि ते गौर करे रहियो आहे. नतीजे ते पहुतासीं तेहरान करे छॾींदासीं. ईरानी फ़ौज समूरनि सलाहियतुनि सां मुकमल तौर ते तयार आहे. सूरत हाल ते बि नज़र आहे. ईरान अञा बि केतिरा ई महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो. अमरीकी गुझे इदारे CIA ट्रम्प इंतज़ामिया खे आगाह करे छॾियो. आलमी नशियाती इदारे मूजिब CIA पंहिंजी नई रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त तेहरान वधीक 4 महीननि ताईं अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो, जंहिं सबब ई ईरान अमरीका जो दबाउ घणे हद ताईं क़बूल न करे रहियो आहे. तेहरान जे ॻाल्हियुनि में सुस्ती जो सबब बि इहो ई आहे. भारत ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी पाकिस्तान खे दुनिया में नई सुञाणप ॾिनी आहे. अमरीका ईरान जंग में किरदार अदा करण जो बि वॾो सबब भारत ख़िलाफ़ जंग में आहे. लाहौर में तकरीब ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल चयो आहे त दुश्मन खे हक़ वारी जंग में शिकस्त ॾिनी आहे. हाणे तरक़ी वारी जंग में कामयाबी मरणी आहे. तरक़ी वारी जंग न खटी त हक़ वारी जंग में मिलियल कामयाबी बि घणी देर ताईं बरक़रार रखी न सघंदासीं. इस्तक़ाम लाइ मज़बूत मैशियत ज़रूरी आहे.

पाक वार जंग में कामयाबी के साल मुकमल थियण ते सिंध के मुख्तलिफ शहरन में रैलियों। कराची में डॉक्टर्स एनआईसीएच का जना अस्पताल से रैली। पाक फौज के भेटा पेश। चौधरी मोहम्मद खान में पुलिस के जवानों पारा जंग में कामयाबी के साल मुकमल थियण ते रैली कढ़ी वही। पनवाकल में भी पाक फौज की हिमायत में रैली। खैरपुर में मेडिकल कॉलेज का सिविल अस्पताल से रैली कढ़ी वही। लाड़कानों में तालीम खाते पारा जंग में कामयाबी की खुशी में रैली कढ़ी वही। पीर चौगोट में मुख्तलिफ स्कूल के उस्तादन शागिर्दन शागिदान पारा रैली कढ़ी वही। भारत के बरतनाक शिकस्त पाक फौज के भेटा पेश कई वही।

0: अखबारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थियण ते संजय जेलन में भी तकरीबू थियूं आहिनि। सेंट्रल जेल सखर में अखबारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थियण ते तकरीब, जेल अमले ऐं कैदियुनि जी शिरकत। खैरपुर जे डिस्ट्रिक्ट जेल में भारत खे शिकस्त ॾियण ते पाक फ़ौज खे भेटा पेश करण लाइ तकरीब थी। हैदराबाद सेंट्रल जेल में बि हक़ वारी जंग में कामयाबी जी तकरीब थी। इंतिज़ामिया ऐं कैदियुनि जी शिरकत। मलीर जेल में बि हक़ वारी जंग में कामयाबी खे साल मुकमल थियण जी ख़ुशीअ में तकरीब थी। पाक फ़ौज खे भेटा पेश कई पई।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
5: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
4: तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
5: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
4: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
5: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
4: तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: दुखोयल इंसान।

0: वजे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252586।
1: जी हा, 2315-2575-786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: अमर सिंध जे सिंध में एक चमकंदड़ सितारो
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
5: Hemay Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hemay Diamond Glow Bleach Cream.
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
7: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
8: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: इट्स 5 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटी
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें
7: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
4: तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
8: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
10: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो जीएफएम 90.4

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیگل کارنر میں گڈ بابر شیخ ऐं मूंसां गॾु स्टूडियोस में मौजूदु आहिनि एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहिबु. ऐं अॼु जो असांजो टॉपिक आहे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी अमान जे असांजे टॉपिक सां रेलिवेंट अव्हांजा जेके बि सवाल हूंदा उहे असां प्रोग्राम में ॾींदो हलां. टॉपिक खे थोरो ईज़ी वे में अव्हांखे मां सम्झाईंदो हलां त इन खे असां ईअं खणी चई सघूं था त अमानत में खयानत या कंहिंसां दगा करणु कहिड़े बि पॉइंट ऑफ व्यू सां. फॉर एग्ज़ाम्पल, तव्हां ॾिठो हूंदो त बैंक्स वग़ैरह में अव्हां असला ॿुधिया हूंदा जंहिंमें कैश वग़ैरह ॾिनी वेंदी आहे, पोइ उहा अगरि हुन अकाउंट में ट्रांसफर या डिपोज़िट न पई थिए ऐं हू जेको बैंकर आहे हुनखे मिसयूज़ करे पियो, त हिनखे असां ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चई सघूं पिया. कंहिंखे असीं अमानत ॾियूं पिया का बि शइ ऐं हुन में हू ख़यानत करे पियो त उहो बि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे. इन खां अलावा काफ़ी सारा मसला आहिनि जेके ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अचनि पिया. को एजेंट या क्लाइंट अव्हां ॾिठो हूंदो त हुन वटि असां खां प्रॉपर्टी रखाईंदा आहियूं पर उहो बग़ैर की असांजी उहा सेल करे छॾींदो आहे, त इहो बि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे. ऐं पाकिस्तान पैनल कोड जे सेक्शन 404-409 में ही ऑफेंसिस जेके आहिनि इहे हिननि जी पनिशमेंट्स बि ॿुधाई वई आहे ऐं हिन जा लीगल कॉन्सिक्वेंस सां वाबस्ता असां सां गॾु स्टूडियोज़ में एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि. 10 ईयर्स खां वठी तकरीबन ही जेको आहे एडवोकेसी सां वाबस्ता आहिनि, एज़ वेल एज़ लेक्चरार बि आहिनि लॉ कॉलेज में. ऐं तमामु सुठी हिननि वटि नॉलेज आहे अबाउट द लॉ ऐं तमामु घणा हिन जा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स बि जेके आहिनि रिटर्न क्वालिफाई थियल आहिनि. सो सभ खां पहिरियां एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब खे अस्सलाम वालेकुम चवंदासीं. शहबाज़ साहब, वेलकम to the studios.
1: Thank you very much. After a long time.
0: Yes, long time. And the viewers tumhe tamam ghano miss pya kar.
1: Badi meharbani, but credit tahan program jo ऐं अलहमदिल्ला हिन में जेको आहे इनोवेटिव शयूं बि तव्हां कयो था, मुख़्तलिफ़ ॿिया जेके बि पैनल एडवोकेट्स आहिनि उन्हनि खे बि इन्विटेशन ॾियो था पिया. ख़ुशी आहे त पूरो इन्वायरमेंट बि तव्हां चेंज करे छॾियो आहे. ऐं थ्रू जेको आहे न पहिरियों असां पंहिंजो लिसनर्स लाइ वेंदासीं, हाणे त तव्हां आइडियो वारो सीन ऐं वीडियो वारो सीन बि जेको आहे न हिते क्रिएट करे छॾियो आहे. नॉलेज आहे त हिकिड़े लेवल न हुजे, जेकी बि सोशल मीडिया जा प्लेटफॉर्म्स आहिनि उते ऑलरेडी हर शइ जी अवेलेबल हुजे. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम फॉर द पीपल to get the benefit from that program.
0: Thank you sir, it's my pleasure. So Shehbaz saab, topic te achu pya criminal breach of trust. Aksar tama ditho aaye ta amanat mein khayanat je ko aaye na article thodo wadhi vayo aaye ai ke wadi kai shi amanat rakhai pe wane ta hu te chhi pe theek aaye yari ta bhalai thi vai jumo wadi achi vai mukhe use bhi karni pave ai je amanat rakhrai aaye po wo je ko aaye pe recover kando wate ta in te awan sab ka pehra asan je je ko aaye ta viewers ke yo budhayo ta je ko yo criminal breach of trust aaye आहे छा हिन जो लीगल अगरि असां डेफिनेशन ॾिसूं.
1: एज़ पर बाबर अगरि लीगल डेफिनेशन दैट प्रॉपर्टी फॉर हिज़ ओन पर्पज आर ही इज़ अ डिस्पोज़िंग ऑफ द प्रॉपर्टी आर या यूज़िंग ऑफ द प्रॉपर्टी इलीगली गिविंग लॉस टू समवन एंड गेनिंग इलीगल गेन टू हिमसेल्फ दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. माना कंहिं माण्हू अमानत में कंहिंखे ॾिनी हुजे अमानत तौर शइ त हिन जो ख़्यालु रखजो, हुनखे पंहिंजे पर्पज़ लाइ इस्तेमालु ऐं हुन जी ख़यानत करे छॾे, दैट डेफिनेशन इज़ कॉल या दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
0: अच्छा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऐं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन ॿिन्हिनि में छा डिफरेंस आहे?
1: बाबा, दीज़ आर टू डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव कॉन्सेप्ट. मिस एप्रोप्रिएशन इज़ अ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन.
0: ठीकु आहे.
1: बदनीयती सां कंहिं शइ खे काई शइ मिली हुजे या काई शइ ॾिनी हुजे या हैंड ओवर थी, त क्वेश्चन तव्हां इहो ई कयो त वट काइंड ऑफ थिंग्स आर बींग डिसअप्रोप्रिएट या मिसअप्रोप्रिएटेड.
0: यस,
1: ऐं उहो कहिड़ी शइ जो जेको आहे ट्रस्ट

0: या प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हुजनि उन्हनि खां वठी करे काई बि अहिड़ी शइ जेके तव्हां खे माण्हू खे इंट्रस्टेड कयो था पिया, कंहिंखे अमानत तौर वॉलंटरली रखारायो था पिया, पर लेटर ऑन ही इज़ यूज़िंग दैट थिंग फॉर हिज़ ओन पर्पस या मिस यूज़िंग इट और वेदर ही इज़ डिस्पोज़िंग ऑफ, डिस्पोज़ मतिलब इहो आहे त या त हुनखे हुनखे ख़र्च थो करे छॾे या ही सेल आउट हिम टू समवेयर एल्स ऐं हुनजो जेको बि गेन थो थिए पाण वटि थो रखे पियो, दैट थिंग इज़ कॉल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में बि वञे थी और प्रॉपर्टी में बि वञे
1: पई। हाणे इन में डॉक्यूमेंट्स जीअं मूं शुरूआत में इंट्रो में बि पंहिंजो ॿुधायो त डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल एजेंट वटि रखाया वेंदा आहिनि अक्सर, तव्हां ॾिठो हूंदो ब्रोकर्स वटि, ऐं उहे ॾिसंदा आहिनि त बाबा 10-20 रुपया अगरि वधीक मिलनि पिया हुनखे सेल आउट करे छॾंदा आहिनि विदाउट जेको
0: आहे माण्हूअ जी ख़बर ई न
1: हूंदी, ख़बर ई न आहे हुनखे चयां मां तुंहिंजो बसि रोज़ी मिले पई तुंहिंजी शइ मूं सेल आउट करे छॾी, मिस्ट्रस्ट ना इहो
0: दैट इज़ अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चऊंबो ई हिनखे, त तव्हां हुन तव्हांखे ट्रस्ट करे ॾिनी ऐं तव्हां हुनजे ट्रस्ट खे ब्रेक कयो आहे ऐं उहा शइ अॻिते तव्हां फॉरवर्ड करे छॾी आहे सेल आउट करे, पर हुनखे अञा ताईं इन्फॉर्म न कयो अथव
1: ऐं
0: दैट मैन स्टिल इन अ कॉन्सेप्ट दैट दैट थिंग इज़ अवेलेबल टू दैट पर्सन ए बी सी जेको बि हुजे, सो उन जे उन ट्रस्ट खे उन ट्रस्ट जी भंजकड़ीअ खे उन ट्रस्ट खे टोड़ खे वी कॉल्ड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
1: अच्छा सेक्शन से अगर अचूं पिया जेको पीपीसी में आहिनि 404-409 इन जो थोरो ओवरव्यू ॾेई वठो त उन में जेके आहिनि इन खां अलावा जेके आहिनि त ॿिया कहिड़ा अहिड़ा जेके आहिनि ऑफेंसिस आहिनि जेके इन सेक्शन जे तहत ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे अचनि पिया।
0: पाकिस्तान पीनल कोड में जेके इहे कॉन्सेप्ट आहिनि उहे अचनि था 403 खां वठी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403, 405, 407, 409 इहो पर्टिकुलर जेके सेक्शन्स आहिनि आर एलोकेटेड फॉर द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन अचे थी पई प्लस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अचे थी पई, हैंड ओवर टू द प्रॉपर्टी टू सर्वेंट्स टू क्लार्क्स टू एजेंट्स ऐं टू पब्लिक ऑफिसर ऐं उहो हुन जी अगरि मिसयूस करे इहे सॼे हिन ज़िमरे में अचनि था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ऐं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी में।
1: असां लेट सपोज एज्यूम कयो असां का शइ जेका हिते कंहिं वटि जेको आहे त बतौर अमानत रखायूं पिया, फॉर एग्ज़ाम्पल असां मोबाइल फोन खे ॾिसी वठूं ठीकु आहे, ऐं असां चऊं पिया मोबाइल फोन तव्हां पाण वटि रखो कलाक खां बाद में मां अचां पियो तव्हां खां वठां पियो ऐं हुनजो मिसयूस पियो करे छॾे, हुनखे पासवर्ड बि टेड़ी अख सां ॾिसी छॾियईं ऐं हुनजो मिसयूस कयईं, हुन मां नंबर्स कढी वरितई डेटा कढी वरितई इहो हिन में अचे पियो।
0: क्लियरिफाई कंदुमि कि अगरि प्रॉपर्टी अगरि काई बि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थिए थो पियो उन लाइ टे शयूं किथे टे लिखियल आहिनि किथे चार लिखियल आहिनि, बरहाल एस पर माए ओपिनियन जेको मां पढ़ियो आहे त हुन में चार शयूं टे शयूं रिक्वायर्ड आहिनि। सभ खां पहिरियों इहा हूंदी आहे त प्रॉपर्टी दैट इज़ गिवन बाय समवन वॉलंटरली ॾिनल हुजे, वॉलंटरली इंट्रस्टेड हुजे, इंट्रस्टेड जो मतिलबु आहे उनखे असां अमानत तौर रखारायूं, इलीगली यूज़्ड it for its own purpose whether the contract expressly or impliedly, implied jo expressly implied jo matlab a ya ta sa verbally unhan ke wa she dinni hunji
1: sahi
0: te rakho paan wat asa ta kede reasonable time te asa ta ko vathi chhadda se
1: okay
0: ya impliedly hoje, implied mana actions and conducts jo through je sa isharatan chadau khani chado या असां इशारतन चवंदो असांखे ॾेई छॾियो या असां इशारतन चवंदो हिनखे हिते रखो, दैट इज़ अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रेक्ट। टियों आहे दैट मैन, वंस अगेन मां रिपीट थो कयां, दैट मैन हैज़ वेदर ही हैज़ यूज़्ड इट अगेंस्ट द कॉन्ट्रेक्ट, वेदर ही हैज़ डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीकु आहे, अगरि इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिसअप्रोप्रिएशन डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द
1: प्रॉपर्टी।
0: सर हाणे अचूं था तव्हांजे ॾिनल मिसाल ते, अगरि तव्हांजो दोस्त आहे तव्हां हुनखे ॾिनी आहे शइ, अगर हो नॉर्मली तव्हांजे साम्हूं ई पासवर्ड खोले थो, घर कॉल करे थो, उन खां पोइ कोई बि मैसेज आहे कम्युनिकेट करे थो टूवर्ड्स फैमिली, मदर थी वई, फादर थी वियो, वाइफ थी वई, सिस्टर थी वई, दैट डज़न्ट मैटर, उहा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में साम्हूं ई न करे, बट यू नो दैट के हिन अगरि कॉल कई बि हूंदी घर ई कंदी। हाणे हिते छा थियो, डिस्ट्रस्ट कीअं थो क्रिएट थिए, मिसट्रस्ट कीअं थो क्रिएट थिए, कि अगर उही फोन खणी करे उही अगर को एक्सटोर्शन मनी जे लाइ कंहिंखे तव्हां जो फोन यूज़ करे एक्सटोर्शन मनी जे करे कॉल थो करे त इन ई नंबर ते या थ्रू थो करे टैक्स थो करे त मूंखे इलीगल मनी पुॼायो, ठीक आहे न, नाउ ही इज़ अ ब्रेक यूअर मिसट्रस्ट, छो की हुन तव्हांजे फोन जो ग़लति इस्तेमालु
1: कयो। ऑल राइट, ऐं जो असां हिन खे एग्ज़ाम्पल ॾेई था सघूं, असां जेके मोबाइल वॉलेट्स हूंदा आहिनि जीएस कैश या ईज़ी पैसा में पैसा हुजनि
0: पैसा खणी ट्रांसफर करे छॾिया, दैट इज़ अ मिसट्रस्ट, दैट इज़ अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
1: ओके सो कुझु मैसेजिस आया आहिनि, फीडबैक आयो आहे, असां उहे शामिल कंदासीं, ऑडियंस जा बि सवाल जेके आहिनि इंक्लूड कयूं पिया। हिकिड़ो ई वॉइस नोट आहे, अचो
2: तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो हुउमि त

0: क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थी वे तो एफ आई आर कें दर्ज कई वे उन कड़ा डॉक्यूमेंट या सबूत की जरूरत पड़ सके थी असो इनते असाजो
1: ठीक है आदा तैयब सर इन्हें अगर थी वे तो यो पे तो असा अना थोड़ा चाहें पे तो एग्जाम्पल्स दियो तो जी असो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर थिए तो इन इन अलावा बया कड़ा एग्जाम्पल्स थी सन पे जी असं हवा दिनोसी पीपीसी जो पीपीसी में जो है 404 में जी लिखल है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है डिसीड पर्सन इन जो किए थी सके तो कैं विल है उन में जो का खुर्द बुर्द कई वे पी उन जी छल प्रॉपर्टी आने जो अख पई वेझी वञे
2: जी मां वंस अगेन बुधायो त जी असां हिते ज़िक्र कयोसीं उहा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी या मिस ट्रस्ट या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उहा आख़िर प्रॉपर्टी आहे कहिड़ी वंस अगेन रिपीटिंग दैट थिंग फॉर द ऑडियंस जेकी असांखे ॾिसे थी ऐं जेकी असांखे ॿुधे थी उन्हनि जे लाइ अगरि विच में बि अगरि असांखे कंहिं ज्वाइन कयो आहे त उन जस्ट फॉर देयर रिपीटेशन फॉर देयर सेक ऑफ रिपीटेशन मां उहा शइ ॿुधायां थो मूवेबल प्रॉपर्टी मोबाइल प्रॉपर्टी में सपोज अगर को माण्हू आहे कंहिंजो सर्वेंट आहे घर में अकेलो रहे थो कुराड़ो आहे या को को कुराड़ी आहे ओल्ड एज आहिनि रहनि था पिया हुनजी फैमिली ॿाहिरि शिफ्ट थियल आहे हाणे उहो चई थो वञे पंहिंजे सर्वेंट खे या पंहिंजे क्लार्क खे चई थो वञे त मुंहिंजे अकाउंट में हिन टाइम 20 लख रुपया पिया अथव ऐं जेकी मुंहिंजी गाॾी आहे अगरि मूंखे कुझु थी वञे त मुंहिंजी गाॾी ऐं मुंहिंजो जेको अमाउंट आहे उहो तव्हां मुंहिंजे फैमिली मेंबर्स खे शिफ्ट करे छॾिजो
1: ठीकु आहे
2: हाणे डिसीस पर्सन जे दौरान उहा शइ हुननि खे ख़बर हुई लेटर ऑन त जॾहिं हुननि इंफॉर्मेशन छा ॾिनी गाॾी त हुननि हैंड ओवर करे छॾी हुननि 20 लख जी जॻह ते 5 लख पाण यूज़ करे छॾिया पाण यूज़ करे छॾिया ऐं बकाया 15 लख ॾिननि जेकी हुननि 5 लख खयां न देट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ
1: ट्रस्ट
2: ईअं कुझु माण्हुनि खे ज़ेवर हूंदा आहिनि अगरि मिसाल लेडीज़ हूंदियूं आहिनि कमु करण वारियूं अगरि औरतूं हूंदियूं आहिनि या हुनजी ख़िदमत वारी हूंदियूं आहिनि सर्वेंट्स हूंदियूं आहिनि या मेड सर्वेंट जेके चइबो आहे अगरि उहो हुननि वटि ज़ेवर
1: आहिनि
2: सपोज़ हुनखे 3 तोला 5 तोला या सपोज़ 10 तोला सोनो आहे त उन्हनि पंहिंजे वली वारसनि खे हाली न ॿुधायो आहे त मूं वटि केतिरो सोनो आहे पर हुनजे मेड सर्वेंट खे ख़बर आहे नाओ शी लेडी इज़ डाइट ठीकु आहे न औरत गुज़ारी वई औरत गुज़ारे वञण खां पोइ त नाओ हुन छा कयो अलमारी खोली अलमारी मां 1 तोलो 2 तोलो जेको बि सोन जेतिरो खणी सघी हुन क्रिमिनल ब्रीच में नथा अचनि उहे चवनि था मिसअप्रोप्रिएशन में मिसअप्रोप्रिएशन जो मां कॉन्सेप्ट वंस अगेन तव्हांखे क्लियर कयां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में वॉलंटरली शइ हैंड ओवर थिए थी पई बदनीअ थी बाद में थी पैदा थिए मिसअप्रोप्रिएशन में शइ मिले थी पई या कोई असांखे ॾिए थो पियो पर इंटेंशन बाद में जेकी डिसऑनेस्टी जेकी पैदा थिए थी उहा लेटर ऑन पैदा थिए थी इनिशियल हुन जेको न हूंदो आहे इंटेंशन न हूंदो आहे त मां हीअ शइ मिसअप्रोप्रिएट कयां या हिन अमानत में खयानत कयां जीअं तव्हां ॿुधायो पिया त अगरि को डिसीस कुराड़ो आहे अगरि को गुज़ारे थो वञे या को विल लिखाए थो वञे हाणे विल में हुनखे ॿुधायो थो वञे मुंहिंजी 200 एकड़ ज़मीन आहे ऐं मुंहिंजे फैमिली मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कई वञे लेटर ऑन अगरि उहो विल खे एग्ज़ीक्यूट करण वारो उन में सिर्फ़ हेर फेर करे छॾे त न 200 एकड़ मां 10 एकड़ जेकी ज़मीन
3: This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream Kudrati Jizan sa taiyar kayal jeka de kudrati nikhar saaf naram ai roshan chehro Heme Diamond Glow Bleach Cream
3: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai GFM 88 network GFM 88 network Sindh ki aawaz
5: अमा, हे ॾिसो मूंखे छा मिलियो आहे
6: छा मिलियो पुटु

0: हिक ॾींहुं हिन छोकिरे जूं जासूसी माराईंदियूं असांखे
1: पता लॻाता हूं
2: असांजा पाणी साफ़ न आहे तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे
0: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो
2: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो
3: साफ़ पाणी महफ़ूज़ ज़िंदगी दस्तनि खां बचा ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो
4: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
6: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
7: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
9: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
11: सुनते रहो GFM 90.4

0: ऐं बैरिन जी रता नामंज़ूर। मुतासिर उम्मीदवारनि जी तहरीक तेज़ थी वई। गडि॒यल चिटाभेटी इम्तिहान में शिरकत कंदड़ उम्मीदवारनि जो लाॻीतो बेदी हैदराबाद में एहतजाज। मुतासिर उम्मीदवारनि गुज़िरियल ॾींहनि सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे ऑफिस साम्हूं धरणो हयो, अॼु ॿिए ॾींहुं बि एहतजाज कयो वियो। मुतासिर उम्मीदवारनि जो चवण आहे त 2024 जी गडि॒यल चटाभेटी इम्तिहान में मेरिट जी रताड़ कई वई। ॻाल्हि फेल थियण जी न पर सिंध जे मुस्तक़बिल जी आहे। नतीजनि जी ॿीहर जांच कराई वञे। मेरिट ऐं हक़नि जे तहफ़ुज़ लाइ जिदोजहद जारी रहंदी। मुतालबा तस्लीम न थिया त एहतजाज जो दायरो वधाईंदासीं। पंहिंजनि हक़नि ख़ातिर अदालत जो दर बि खड़काईंदासीं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हाँ, नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो एक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, जंहिंमे शामिल आहे SPF 30, सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी, ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन, जेके ॾियनि तव्हांजे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो। रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद। हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस। हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। हाँ, नरम चमक ऐं साफ़ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, जंहिंमे शामिल आहे SPF 30, सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी, ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन, जेके ॾियनि तव्हांजे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो। रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद। हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस। हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।

अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स।

SKR लिखो स्पेस दियो पंहिंजो मैसेज 888 ते यानी 8881 ते अवां सेंड करे छॾियो। त दोस्तों बिल्कुल अवां खे ॿुधाईंदो हलां त जीअं मूं ॻाल्हि कई शुरूआत में त हेमे नेचुरल्स वारनि जो पैगाम आहे मुंहिंजे ज़िमे। कहिड़ो मक़सदु आहे हिननि जो मक़सदु इहो आहे त हिननि काफ़ी सारी रिसर्च खां बाद में हिकु अहिड़ी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कई जेका तमामु घणी फ़ाइदे वारी आहे। त हिननि जो मक़सदु इहो आहे त हिन जो पैगाम मां अवां थी कन्वे कयां त जीअं तव्हां हिननि जी प्रोडक्ट इस्तेमालु करे आज़माए सघो ऐं तव्हां बि फ़ाइदो हासिल करे सघो जीअं ॿियनि हासिल कयो आहे। जी हा दोस्तो, हेमे नेचुरल्स वारनि जी प्रोडक्ट आहे हेमे ब्यूटी क्रीम। जी हा, जंहिंमें हिननि शामिल कयो आहे SPF 30 जेको अवां जे चेहरे खे सिज जे नुक़सान खां रेस खां महफ़ूज़ रखे। यार सिज जी ॻाल्हि यादि आई, अॼु मस मस को सही तरह जेका वाइटमिन डी वरिती आहे मूं सिज मां, ऐं तव्हांखे बि सिज ॾाढो वणंदो हूंदो। पर असां जॾहिं इलाही सीए खां पोइ जॾहिं ॾिसूं था न सिज खे, त हाली फ़िलहाल ॾिसूं था यार ख़ैर आहे, भले इहे रेस भले असांजे चेहरे खे नुक़सान पहुचाइनि, पर हेमे ब्यूटी क्रीम वारनि इन में SPF 30 जेको शामिल कयो आहे, अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदड़ आहियो हेमे ब्यूटी क्रीम, त तव्हांजे चेहरे खे हिननि रेस खां महफ़ूज़ रखंदी। ऐं गॾो गॾु हिन में हिननि कॉजिक एसिड शामिल कयो आहे हेमे ब्यूटी क्रीम में। हिन जो कमु इहो आहे त तव्हांजे चेहरे ते अगरि दाग धबा निशान हुजनि त उहे निशान तव्हांजा दूर थी सघनि था। गॾो गॾु हिन में शामिल आहे ग्लूटाथायोन, वाइटामिन सी ऐं आरबुटीन। इहे वरी तव्हांजे चेहरे जी स्किन खे जेको आहे न नेचुरल ग्लो ॾियनि। हाणे नेचुरल ग्लो मां मुराद इहो आहे त तव्हां जॾहिं नेचुरली असांजी स्किन ॾिठी वञे न त असांजी नेचुरली तमामु ख़ूबसूरत आहे ऐं तमामु घणी ग्लोइंग आहे। पर छा पियो थिए त जेका अॼुकल्ह जेका पॉल्यूशन वधे पई या असांजी जेका आहे ख़ुराक बि अॼुकल्ह जेको आहे थोरी मिलावट, बल्कि इलाही मिलावट वारी थी वई आहे, तव्हां पाण ॾिसो पिया। हुन वजह सां जेको आहे न असांजी स्किन तमामु घणी डैमेज थिए पई ऐं वक़्त खां पहिरियों ई असांजी स्किन जेके आहे न उहो लटकण शुरू पई थी वञनि, यानी असांजी ओवर एज स्किन लॻे पई। त इन्हनि सभिनि खे कंट्रोल करण जे लाइ हिन में जेके हिननि इहे शयूं शामिल कयूं आहिनि, ख़ासि तौर ते वाइटामिन सी, आरबुटिन ऐं ग्लूटाथायोन, इहे तव्हांजी स्किन खे बिल्कुल रिपेयर कनि पियूं ऐं तव्हांजो नेचुरल ग्लो जेको आहे उहो वापसि आणनि पियूं। आहे न मज़े जी ॻाल्हि, त जॾहिं अव्हांजो नेचुरल ग्लो अचे पियो त तव्हांखे ईअं बिल्कुल बि महसूस न पियो थिए त तव्हां को आर्टिफिशियल फेशियल वग़ैरह करायो आहे या को तव्हां क्रीम्स वग़ैरह इस्तेमालु कंदा आहियो, तव्हांजो नेचुरल ग्लो वापसि अचे पियो त तव्हां ॾाढा ख़ुशि पिया थी वञो। इलाही सारा अहिड़ा लिसनर्स आहिनि असांजा जेके इस्तेमालु करनि था हेमे ब्यूटी क्रीम ऐं पंहिंजो फीडबैक ॾींदा आहिनि। मां हुननि जो फीडबैक जॾहिं ॾिसंदो आहियां अव्हां ताईं बि पहुचाईंदो आहियां त मूंखे ॾाढो वणंदो आहे। सिमिलरली दोस्तों, अॼु बि तव्हांजा काफ़ी सारा फीडबैक्स ईंदा जेके मां ताईं पहुचाईंदुसि ऐं उहे असांजा लिसनर्स जिन अञा ताईं हेमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु न कई आहे उहे उन्हनि फीडबैक्स मां फ़ाइदो हासिल करे सघंदा। ठीकु आहे, हाणे हेमे नेचुरल्स वारनि इहा ॻाल्हि रिकमेंड कई आहे त तव्हां तरीक़ा इस्तेमालु जेको हिननि ॿुधायो आहे न एक्चुअल उहो तव्हां अगरि इस्तेमालु कंदव, उहो तव्हां अपनाईंदव त तव्हांखे अञा वधीक रिज़ल्ट मिली सघे थो। कहिड़ो तरीक़ा इस्तेमालु आहे इहो त सभ खां पहिरियां तव्हां जॾहिं दुकानदार वटि वञो था हेमे ब्यूटी क्रीम वठण, त हेमे जो लफ़्ज़ ज़हन में रखी छॾियो। असां चवंदा आहियूं न प्रोग्राम में हेमे हेमे आहे त इहा हेमे हेमे ई आहे, तव्हांखे हेमे वारनि जी हेमे ब्यूटी क्रीम ई वठणी आहे। पोइ तव्हांखे छा करणो आहे, राति जो सुम्हण खां पहिरियां तव्हांखे चेहरो वॉश करणो आहे, तंहिंखां बाद में हेमे ब्यूटी क्रीम चेहरे ते लॻाइणी आहे। जिते दाग दबा मोहिड़ा हुजनि उते थोरी वधीक मक़दार में लॻाइजो, कंजूसी न कजो। सुम्ही रहिजो, सुबुह जो जॾहिं उथंदो उथण महिल तव्हां मुंहं त धोईंदा हूंदो बिल्कुल, जॾहिं तव्हां मुंहं धोईंदो त पोइ तव्हांखे विद इन 7 डेज वाज़े तौर ते हिन जो रिज़ल्ट महसूस थींदो, तव्हां पाण फील कंदा त यार तव्हांजी स्किन बिल्कुलु हाणे जवां जवां ऐं बिल्कुल नर्म मुलायम तरियो ताज़ा ऐं नेचुरल ग्लो पई ॾिए। त बिल्कुल तव्हां हिन खे आज़माए सघो था, हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। ठीक आहे, सो वठण वक़्त हिन जी कुझु निशानियूं अथव, पिंक कलर जी डबी आहे, टॉप लेफ्ट साइड ना गुलाब जो गुल छपियल आहे, सो बि गुलाबी रंग में, ऐं हेमे नेचुरल्स ब्लैक राइटिंग में लिखियल आहे। तव्हां इहे निशानी तौर ज़हन में रखी सघो था ऐं गॾो गॾु अव्हांजे शहर में अगरि हेमे ब्यूटी क्रीम न मिले त तव्हां शहर जी शाही बाज़ार वेंदव, उते तव्हां कंहिं बि दुकानदार खां नालो वठी ख़रीद कंदव हेमे ब्यूटी क्रीम जो। ठीक आ, सो हेमे ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांखे 330 रुपए में मिली सघे थी, पर हाणे कुझु दुकानदारनि वटि जेको स्टॉक शॉर्ट आहे या कुझु नओं स्टॉक अची वियो आहे मुंहिंजे ख़्याल में, त हिन जा 10-20 रुपया वधी विया, त हुन ते तव्हां हुन सां झेड़ो न कजो 10-20 रुपया भरे वठिजो, छाकाणि त 10-20 रुपयनि जे करे तव्हांखे सुठी प्रोडक्ट मिले पई त उहा तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद आहे। ठीकु आहे, त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे लाइ फर्दर तव्हांखे मालूमात घुर्जे या तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते मौजूदु आहे इहा मालूमात घुर्जे त तव्हां हिननि जे नंबर ते राबतो करे सघो था। नंबर साइन 03133622265। जी हा दोस्तों, नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो, 03-13-36-22-26-5 ऐं 03-36-71-35-407। जी हा, नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो, 03

जी दोस्तों, या तमाम के म्यूजिक सुनाने बुधाई प्रोग्राम में शामिल छह तरीकेकार अवां के ऑलरेडी खबर आए तो प्रोग्राम की शुरुआत में तमाम प्यारो प्यारो गानों अवां सभी के लिए प्ले कर छो है गानों बुध इंजॉय कर मूसा गड रहो हेमे ब्यूटी शो में पूरे

तानी मेहरबानी ना प्रोग्राम में शामिल थिया। सो सलाम अदा में प्यारी आरजे सिदरा की दोस्त इरम हूं और आपके घर में मंगनी है उन्होंने भी तुम्हारे घर में शादी में तुझे लाइन उन्होंने भी सहरो हलाया वाला है तुम बुद्धि वाला है कौन है। सो आई विल ट्राई फॉर प्लेइंग द सेरा ऑफ ममताज मोलाई जो तुम फरमाइश कही है तुझी मेहरबानी। सो ए एच ममनून सर सबको सलाम वालेकुम असलाम ममनून भाई गोठ शादी खां जिसकानी लग मीरपुर खास है गुलाब अली जिसकानी मोहम्मद हाशिम जिसकानी एंड शमन अली लाशारी बाबर भा हेमे ब्यूटी क्रीम मीरपुर खास में किथे मिलंदी एसएमएस शामिल करियो थैंक यू अदा मीरपुर खास में शाही बाजार हलिया वनो उते तवां कहीं भी मशहूर दुकानदार खां नालो वठी खरीद कयो उनके चयो त असांखे हेमे ब्यूटी क्रीम खपे ठीक हेमे छाकाणि त हेमी हेमी आहे ओके। सो जी इन खां अलावा असां सां गॾु आहे शो नाई से आई एम तैयबा आपका शो बहुत शौक से सुनती हूँ सॉन्ग सुना दें रऊफ मक्सी का कोई भी ओके थैंक्स बाबर भाई तैयबा आपका बहुत शुक्रिया और जब फरमाइशी फॉर्मेट हो फिर आप फरमाइशी आ करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अदरवाइज फरमाइश करने का पास हो कंदा ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल प्रोग्राम में सेगमेंट आए सॉन्ग सुनियाण मां म्यूजिक प्ले किया वहां पे एक बेरो बीयर तो सुनियाण बुधायो तो या केड़े गाने जी म्यूजिक आ सब बुधो गौर सा आई सुनियाणो तो बाबा ही केड़े गाने जी म्यूजिक आ छो बला दे ता अनिया दिन के भी न सुनियाती है म्यूजिक के।

0: त दोस्तों या तव्हां मूंखे सुञाणे ॿुधायो कहिड़े गाने जी म्यूज़िक आहे। सो वाट्सअप जी तरफ़ मां अगरि वञा त वाट्सअप ते मूंखे तमामु घणी अॼु सेल्फी मिली आहे असांजे तमामु प्यारे लिसनर जी। कहिड़ो लिसनर थी सघे थो तव्हांखे ख़बर आहे, ऐं हिन जो वॉइस नोट बि आयो आहे जेको मां प्रोग्राम में शामिल कंदुसि। अशरफ अली मीराली साहिब आहे जंहिं मुंहिंजे ख़्याल में चोथी डबी वरिती आहे हेमे ब्यूटी क्रीम जी, ऐं माशाला स्किन सफ़ा ईअं जवां जवां लॻी पई आहे। साईं जन जी साईं महिरबानी, अवां जी मोहबत ईअं असल में अवां जी सेल्फी ने अवां जी मोहबत हूंदियूं आहिनि जेके मूंखे तमामु घणियूं वणंदियूं आहिनि। सो हिन जो वॉइस नोट आहे, अचो ॿुधूं पिया।
1: वालेकुम बाबर बा, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? मां उमीद कयां थो अवां जिते हूंदा ख़ुशि हूंदा ऐं रब पाक जी अमान में हूंदा। भाउ मां विलेज वन बशाम यूसी कैसांगी डिस्ट्रिक्ट क्लारकाना खां अशरफ अली मीराली पियो ॻाल्हायां। भाउ जीअं त कल्ह ॻाल्हि कई हुई त मां हेमे ब्यूटी क्रीम वरिती आहे, टे दफ़ा अवल सेल्फी सेंड करे चुको आहियां, चोथी सेल्फी अॼु सेंड करे रहियो आहियां। सो असां तव्हां मोकिलियूं पिया था, ऐं हीउ जेको प्रोग्राम आहे रस डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारे तवन सां इलाही सुठो आहे। ख़ासि करे तव्हां जेकी कंपेयरिंग आहे तव्हांजी हिन में, उहा बि क़ाबिल तारीफ़ आहे। ऐं हीअ जेका क्रीम आहे हीअ त पंहिंजे वटि पाण बिल्कुलु लाजवाब आहे, वेरी गुड आहे, वी आई पी प्रोडक्ट आहे, ज़बरदस्त आहे। हिन जो रिज़ल्ट जेको आहे त तमामु बहितरीन आहे। दाग दबा ख़तमु करे पियो, उस जे नुक़सानकार शुआनि खां बचाए पियो, ऐं उन खां अलावा कुदरती गिलो बि ॾिए पियो, ज़बरदस्त आहे। ऐं वधंदड़ उमिरि जा असरात जेके आहिनि उन्हनि ते बि बिल्कुलु कंट्रोल आहे हिन जो, ऐं वी वी आई पी रिज़ल्ट आहे, सफ़ा भली क्रीम आहे, क़ाबिल इस्तेमालु आहे। ऐं हिन महिल तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधनि पिया अब्दुल जब्बार मीराली, तनवीर मीराली, साजन मीराली, ऐं नंढो अलीदर मीराली आहे, मुमताज़ मीराली। ऐं भाउ हिन जी क़ीमत जेको आहे न हाणे 250 रुपया थी वई आहे, उन खां घटि कोन थी मिले। असांजे शहर लाड़काणे में जेका शाही बाज़ार आहे उन में हीअ अवेलेबल आहे, जॾहिं वञ तॾहिं मिले पई थी। ऐं मां पंहिंजे प्यारे भाउ असांजो ॻोठ वली मोहम्मद निवासी आहे, ऐं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ासि असांजो इम्तियाज़ अली भाउ, परवेज बंगलाणी साहिब आहे, जावेद बंगलाणी साहिब आहे, नंढो बिलाल बंगलाणी आहे, उन्हनि खे मुंहिंजे तरफ़ां खोड़ सारा
0: वालेकुम अस्सलाम अली मदद। भाउ तव्हांजी महिरबानी यार, तमामु प्यारो फीडबैक तव्हां ॾिनो, ऐं तव्हां क़ीमत बि मूंखे ॿुधाई 250 रुपया हाणे थी वई आहे, यानी 20 रुपया वधी वई आहे। ख़ैर आहे त बाबा, तमामु प्यारी प्रोडक्ट आहे, ऐं मीराली अशरफ मीराली साहिब जेका इस्तेमालु कई आहे, बाक़ाइदा तौर ते पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर कई। हाणे इट्स अप टू यू, तव्हां इन जे ऐं इन खां अलावा जेके काफ़ी सारा एक्सपीरियंस असां सां शेयर कनि पिया हेमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु करे, तव्हां हुनजो केतिरो फ़ाइदो वठो पिया इहो वरी अव्हां जे मथां आहे। ऐं हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम हर फर्द लाइ, यानी अदा हुजनि या अदड़ी हुजनि, हर टाइप जी स्किन लाइ यकसां मुफ़ीद आहे। तव्हां हिन खे आज़माए सघो था, ऐं विद इन 7 days तव्हां इन जो रिज़ल्ट महसूस कंदव। तव्हां पाण चवंदव यार बाबर भाउ, 20 त छा भले 500 बि वधाइनि, असां तॾहिं बि वठंदासीं। अहिड़ी प्यारी प्रोडक्ट आहे हेमे ब्यूटी क्रीम, छाकाणि त हेमे हेमे आहे। ठीकु आहे, अचो त तव्हां गानो ॿुधायां अहमद मुगल जी आवाज़ में, तमामु प्यारो प्यारो, ऐं इंजॉय करायां। ॿुधो ऐं मूंसां गॾु रहिजो पूरे 8 वॻे ताईं।

हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाउ लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम

0: घाण नरम चमक ऐ साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड ऐ जिल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐ आर्बुटिन जेके डियन तव्हां जे चेहरे के कुदरती साफ ऐ चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐ हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: जी दोस्तों बिल्कुल जबरदस्त गानो तुम बुधे उम्मीद है तुम पसंद आयो हों सो इन अलावा हिंदर मां लाइव कॉल्स इंक्लूड कंदुस आई 888 वारा मैसेजेस एज वेल एज ठीक है विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो मोहम्मद हारून संदीलो अब्दुल हमीद संदीलो फ्रॉम मोरो खां गोट होत खां लुंड खां सादिक अली लुंड मजर बलोच अदा बाबर शेख गौराख में बर्फ पई आई हेमे ब्यूटी क्रीम चलो ठीक आदा ताजी मेहरबानी बलोच साहब शामिल थे लाए बाबर भाई आपका शो बेहतरीन है मोहम्मद जुम्मन खास के लिए फ्रॉम मीर खान लगारी सकरंड खां भली खार सकरंड वारो अच्छा ही घने वारो मैसेज है ओके ही एएच ममनून सर कल वाली मैच में सलमान अली आगा की बैटिंग का क्या हुआ था भाई आई डोंट नो आई नॉट इंटरेस्टिंग इन क्रिकेट मैच आपका बहुत शुक्रिया सो इसके अलावा सर बाबर प्रोग्राम जबरदस्त तमाम बेहतरीन कंपेयरिंग फ्रॉम हालानी कुर्बान अली डेपर मोहम्मद आचर डेपर अहमद खान डेपर सावन खान हालेपोटो डेडिकेशन एनर्जी अब्दुल जब्बार सेना ओके अदा सो अच्छा ये तैयार बाबारो मैसेज है ओके यार वही गाल नहीं आती कि म्यूजिक न सुनाती या तो कड़े गाने की म्यूजिक है प्ले क्या पे गौर से बुधो लाइव कॉल जरिए अची करे मुझे बुधाया कड़े गाने की म्यूजिक ठीक है बुधो गौर से

0: ठीकु आहे दोस्तों, हींअर मां लाइव कॉलर जी तरफ़ हलंदुसि ऐं ॾिसूं था लाइन ते कहिड़े केरु आहिनि। हाणे नो वॉइस नोट्स, ठीकु आहे, फर्दर मां वॉइस नोट्स शामिल न कंदुसि, जस्ट लाइव कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: साईं, केरु था ॻाल्हायो? शहज़ादो सोरेड़ो साहब, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो? अलाह जो शुक्र आहे। शहज़ादो साहब, म्यूज़िक प्ले कई आहे, कहिड़े गाने जी आहे? अबोल मारे छॾियो, कहिड़ो ज़िलो आहे तव्हांजो?
1: ज़िलो घोड़की खानपुर बार खां।
0: अच्छा, परे आहे, ठीकु आहे, चलो ठीकु आहे, मां गानो थो तव्हांखे ॿुधायांव, ठीकु
1: आहे?
0: ओके सरोड़ो साहब, तव्हांजी महिरबानी ऐं प्रोग्राम में शामिल थिया। अच्छा, जिन वटि नशियात घटि अचे पई त उहे फेसबुक ते बि ॿुधी सघनि था, GAFM असांजो पेज आहे, उते लाइव मां अचां पियो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम। अदा, केरु था ॻाल्हायो?
2: जी
0: जी जी, केरु था ॻाल्हायो भा?
2: इस्माइल जेतो थो ॻाल्हायां, शिकारपुर खां।
0: इस्माइल, छा हाल
2: आहे?
0: अलाह जो शुक्र आहे, सही थिए ई थो इस्माइल? हा
2: हलो
0: इस्माइल, आवाज़ नथो अचे मुंहिंजो,
2: घटि त ध्यानु ई अचे थो।
0: अच्छा ॿुधाए, कहिड़ो म्यूज़िक आहे, कहिड़े गाने जो आहे, कहिड़ो गानो आहे, भला ॿोल कहिड़ा आहिनि? हल ठीकु आहे, महिरबानी अदा इस्माइल।
2: ओके ओके
0: ओके, त इस्माइल वटि मूंखे लॻे पियो सी ॾाढो हुयो, त हुनजो ध्यानु सीअ खां बचण जे पासे में वियो। बहरहाल, का ॻाल्हि कोन्हे अदा इस्माइल, ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां मूंखे ज्वाइन कयो। सो हिकिड़ो ॿियो कॉलर शामिल कयूं पिया, ॾिसूं था लाइन ते केरु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार मुंहिंजो आवाज़ अची वियो पियो? सही थो हुजे फोन ते आवाज़?
2: जी जी,
0: सफ़ा VIP।
2: VIP
0: नालो ॿुधायो। इम्तियाज़, हा छा हाल आहे इम्तियाज़ भाउ?
2: अमन ख़ैर।
0: अॼु फर्स्ट टाइम पाण फोन ते पिया ॻाल्हायूं, ईअं न?
2: जी जी, फर्स्ट करे कॉल लॻंदी न आहे।
0: चलो, अॼु तव्हांजी कॉल लॻी आहे, कीअं पियो लॻे प्रोग्राम ऐं हेमे ब्यूटी क्रीम जो छा रिज़ल्ट आयो मां वटि?
2: सर इस्तेमाल जनरल स्टोर उते मिले थी,
0: चलो गुड आहे साईं, तव्हांजी महिरबानी। अच्छा, मां म्यूज़िक प्ले कई आहे, बंगलाणी साहब कहिड़े गाने जी आहे? यार ॾाढी सवली आहे। बहरहाल ॿुधायो त तव्हांजे लाइ जेको आहे, मां जेको आहे, अच्छा कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदो असांजे सामान खे या दोस्तनि खे सलाम ॾियणु चाहींदो?
2: दोस्तनि खे मुंहिंजो पैगाम इस्तेमाल करे साफ़ सुथरो करे थी, चोरी जो चंड करे थी, कहिड़ो सुठो आहे तव्हां वञी वठिणो त हींअर सर्दी जे मौसम आहे, गर्मी घटि आहे, चेहरे ते लॻाईंदा कहिड़ो VIP थींदो, इहो मुंहिंजो रिक्वेस्ट आहे, गुज़ारिश कई आहे सभिनि खे, मां तव्हां वञी वठो, मुंहिंजा कुझु दोस्तनि आहे, आर्टिकल दोस्तनि खे
0: जी जी शामिल कयो।
2: काठड़ी खां त गुलाम रसम मरी विलेश वासिफ़ शाह यूसुफ असांखे गिफ़्ट गार्ड खण खां नंढो तबीर अली मेरानी, मुंहिंजो दोस्त अशरफ मेरानी खे सलाम हुजनि, बिलावल अली सलाम।
0: चलो वालेकुम अस्सलाम अदा, तव्हांजी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। त दोस्तो बिल्कुलु, असांजा तमामु घणा प्यारा लिसनर्स आहिनि जेके प्रोग्राम में ज्वाइन कंदा आहिनि, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। ऐं इन्हनि जी तरफ़ां जेको फीडबैक हूंदो आहे न, ऐं हेमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कंदड़ आहिनि, त जेको फीडबैक ॾींदा आहिनि न, मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे इहा नंढड़ी, त इहो तव्हां जेको आहे न फीडबैक मां तव्हां फ़ाइदो वधि खां वधि हासिल कयो, ठीकु आहे? सो लेट सी नेक्स्ट कॉलर केरु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: अदा, केरु था ॻाल्हायो भा? लाशारी साहब, नालो ॿीहर ॿुधायो।
3: कमल खान लाशारी।
0: शमन
3: हमन। हमन
0: अमन।
3: जी जी, हमन हमन
0: हमन, ठीकु आहे। अदा, इहो ॿुधायो त जेका म्यूज़िक प्ले कई आहे कहिड़े गाने जी
3: आहे?
0: छा आहिनि इहो
3: सॉन्ग?
0: न साईं, ज़ामिन अली कोन्हे। हलो का गाल कोने मां जेको आ त हियर जेको आखिर में प्ले कंदो मां बुध जो आ अडे जेका तकरीबन के भी सही जवाब न आए स्टिल आ मां दिसा पियो त के सही जवाब दे पियो या न सो का गाल कोने अगर ता सही जवाब न वीडियो पिया सो मां हियर जेको आ त लाइव कॉल जी तरफ हलंदस ए दिसू ता लाइन ते गर केर मौजूद आहिन अस्सलाम वालेकुम
4: पिताफी
0: साहब खैर आमीन अदा आमीन पिताफी साहब म्यूजिक प्ले कहवाए केड़े गाने जो सफा समझ में नथी अचे भला हेमे ब्यूटी के समझ में आई पक हेमे हेमे हेमे बो कुछ तो ना हेमे हेमे
4: हेमे
0: ठीक है मेहरबानी साईं शामिल जा तो
4: दोस्त शामिल कर
0: जी जी शामिल कर वो
4: अब्दुल लतीफ जो
0: चलो महरबानी अदा तो दोस्तों अं तक कें भी सही जवाब न दिनों सो मुख्य लगे तो मां यो गानो प्ले कई चवन यार यो गानो असा अचे पे अस न कर शामिल नी जमान अस न बुधा सी इट्स ओके अच्छा एक वॉइस नोट मुझी दिल न पी चे तो मैं इनके इग्नोर क्या इन हेमे ब्यूटी क्रीम की सेल्फी भी मोकली है छा पा चवन बुधो
5: इस्तेमाल चाचो भी यूज कहो मल्होत्रा वो भी यूज कहमद अली मंजूर अमन
0: डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कवण तो दोस्तों एक दफा बीहर में पैगाम बुधायूं अना हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारन दावा कई है हेमे ब्यूटी क्रीम में SPF 30 वाइटामिन सी ग्लूटाथायोन कॉल्जिक एसिड केतरा ही इनग्रीडियंट्स शामिल है चेहरे की स्किन के बिल्कुल परफेक्ट नरम मुलायम तरो ताजा रखन पाया तो तुम्हें इन फायद हासिल कर सो था विद इन 7 days तक इन रिजल्ट मिली सके तो जैसे अवे शहर में न मिले तो तेजे हेल्पलाइन नंबर से कॉल करण में बिल्कुल भी कंजूसी न कर धड़ाधड़ कॉल्स क्यों तो जी तवे शहर में ही इलाके में गोठ में वेझे स्टोर से अवेलेबल कराएं सो नंबर 0003735407 तो म्यूजिक हो जो प्ले किया यो गानो जो उन बोल आन अच्छा सिंगर है यो इकरार वहीद अली बोल आन जे रोज रसंदे मेड़ा मिलंदा है बुध इंजॉय कर अगले प्रोग्राम तेजे मेजबान बाबर शेख के इजाजत सदाई गड अला हाफिज जिंदगी बखैर।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।